नमस्कार श्रोताओं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आज दिन है शुक्रवार, सक संवत 1948 अश्विन महीने के आज 17वीं तिथि है। साथ ही अंग्रेजी सन 2026 अक्टूबर महीने की आज 9 तारीख है। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58 हो चुके हैं। इसी के साथ मैं शर्मिला सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आरंभ करती हूँ आज की पहली सभा।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद के सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, सहायक प्रोफेसरशिप या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाजी वाडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। चलिए अब आपको देते हैं आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 6:10 पर आप सुन पाएंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम। तत्पश्चात आप सुनेंगे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। समय रहेगा 6:40 का। 7:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जो कि रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:05 पर आप सुनेंगे आज का दिन और साथ ही सुनेंगे पोएम ऑफ द डे। 7:30 पर आप सुन पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज़ आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समय रहेगा 8:15 का।

श्रोताओं, 8:30 पर आप सुन पाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से। 8:40 का समय रहेगा सुरों की रंगोली कार्यक्रम का। तत्पश्चात 9:00 आप सुनेंगे पुआर आंचलिक बातुरी, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से। 9:15 से आरंभ किया जाएगा स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को, जिसके तहत सबसे पहले आप सुनेंगे खेलमा भक्ति गीत। गायक कलाकार होंगे जेतलिन जेते और उनके साथ ही। रांगखोल कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे रांगखोल लोकगीत। गायक कलाकार सोनथोई बोई रांगखोल और उनके साथियों की आवाज में। समय रहेगा 9:25 का। 9:35 पर आप सुनेंगे जयंतिया भक्ति गीत मेलम भलंग पिरेंग और उनके साथियों की आवाज में। 9:45 पर संगी लाल सिंह और उनके साथियों के गाय कुछ बेटे भक्ति गीतों का आनंद आप ले पाएंगे सुबह के 9:45 पर।

श्रोताओं, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को जो रिले के जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। इसी बीच आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे

मिड डे न्यूज तत्पश्चात 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी आज की हमारी पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब आनंद लेते हैं कुछ भक्ति गीतों का।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का भक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: खैर ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसे लगा?
1: अच्छा है, मगर चाचा जी आपने तो कहा था कि ये क्लब अपने देश वालों का है, अपनापन तो यहां दिखाई नहीं दिया।
2: माय फुट, इंडियंस को अपनापन वहीं दिखाई देता है जहां मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट हो।
1: जी
2: और नहीं तो क्या, यहां देखो हर आदमी खुशहाल नजर आता है, न रोटी की फिक्र, न कपड़े का गम और न घूंघट का झगड़ा। और एक तुम्हारा देश है मिस्टर, चार रोटी में से एक रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश।
1: वो देश आपका भी तो है।
2: गाली मत दो
1: जी,
2: जो देश दूसरों के रहम और कर्म पर पल रहा हो वो देश मेरा नहीं।
1: मेरा तो है।
2: होगा, तुम उसे अपना समझते हो जो मदद लेता है, मैं उसे अपना कहता हूं जो मदद देता है। तुम लोग जमीन से पेट भर अनाज नहीं निकाल सके और लोग चांद तक पहुंच गए, है कोई मुकाबला?
1: जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया ने सर झुकाया है।
2: सर झुकाने पर फक्र करते हो, है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज जीरो जीरो एंड जीरो।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे।

0: इसमें सभी राज्यों की राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र के जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद के अनुमोदित कर सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा व्यक्त की कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी। इससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल किए जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic पर लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिले हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए। सबसे अधिक 7,16,00,000 रुपए कृषि बीज क्षेत्र से प्राप्त हुए। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के उनके फार्म हाउस नानाची वाड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर नए मिसाइल हमले करने का दावा किया। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी। इस बीच रियाद में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटों सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार जो लेके गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब प्रस्तुत है आज का दिन

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओ, आज का दिन प्रस्तुत करने से पहले चलिए आज सुनते हैं आज की कविता।
2: लवी जोशी, आई स्टडी इन क्लास 2 सेक्शन बी। टुडे आई एम गोइंग टू से ए पोएम। पोएम्स नेम इज ओवर इन द मैडो। ओवर इन द मैडो, इन द सैंड, इन द सन, लिव्ड एन ओल्ड मदर टोडी एंड हर लिटिल टोडी वन। ब्लिंक सेड द मदर, I blink, said the one. So they blink and they blink in the sand, in the sun. Over in the meadow where the stream runs blue, lived an old mother fish and her little fish too. Swim, said the mother. We swim, said the two. So they swim and they live where the stream runs blue. Thank you.
1: श्रोताओं, आज 9 अक्टूबर है। साल के 12 महीने का ये 9वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। जानेंगे आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जानेंगे आज के दिन जन्मे और आज के दिन मरे कुछ खास व्यक्तियों के नाम। दोस्तों, आज उत्कलमणि गोपबंधु दास जी की पुण्यतिथि है और साथ ही आज वर्ल्ड पोस्ट डे और टेरिटोरियल आर्मी डे भी है। चलिए जानते हैं आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। श्रोताओं, सन 1446 में कोरियन वर्णमाला हंगुल का पहली बार प्रकाशन हुआ। सन 1855 में आइजेक सिंगर ने सिलाई मशीन की मोटर का पेटेंट करवाया था। सन 1865 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में तेल के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाई गई थी। सन 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी। श्रोताओं, और सन 1876 में पहली बार टेलीफोन पर आउटवायर के जरिए दो तरफा बातचीत हुई थी। इसके बाद सन 1947 में चलती हुई कार और प्लेन में बैठे दो लोगों ने बातचीत की थी। सन 1959 में ऑटोरिक्शा और प्लेन में चलते हुए लोगों ने बात की। सन 1888 में वाशिंगटन मॉन्यूमेंट को सरकारी स्तर पर आम जनता के लिए खोल दिया गया था। सन 1922 में लंदन महानगर पुलिस सेवा आयुक्त सर विलियम हार्वर्ड को आर्सेनिक भरे चॉकलेट की जहर का शिकार बनाया गया। सन 1962 में युगंडा गणतंत्र बना। सन 1991 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में जापान से बाहर पहली सुमो रेसलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। सन 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की थी। तो दोस्तों, ये थी उन व्यक्तियों के समा कीजिए तो दोस्तों ये थी आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। चलिए अब जानते हैं आज के दिन जन्मे कुछ खास व्यक्तियों के नाम। सन 1624 में मुराद बख्श शहजादा का पुत्र था जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनका जन्म आज के दिन सन 1826 में हुआ था। सन 1873 में विलियम एस मरिस, जो भारत सरकार के गृह विभाग के कार्यवाहक सचिव, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। सन 1897 में 1877 में गोपबंधु दास, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि, साहित्यकार तथा उड़ीसा के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। सन 1897 में मंजूर भक्त वत्सलन, जो स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, उनका जन्म भी आज के दिन सन 1827 में हुआ था। सन् 1945 में अमजद अली खान, जो प्रसिद्ध भारतीय सरोद के वादक थे, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था।

श्रोताओं, सन 1940 में जॉन लेनन का जन्म हुआ था, जो गीतकार और संगीतकार भी थे। सन 1986 में आरगी लुइस बरसुगा, जो 1946 में फीफा विश्व कप टीम का अर्जेंटीना का फुटबॉल खिलाड़ी थे, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। दोस्तों, ये थे कुछ खास नाम जो आज के दिन जन्मे थे। चलिए अब जानते हैं आज के दिन मरे कुछ खास व्यक्तियों के नाम। सन 1963 में सैफुद्दीन किचलू, जो पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका निधन आज के दिन हुआ था। और सन 2006 में काशीराम भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे और बहुजन समाज पार्टी भाजपा के संस्थापक भी थे, उनका निधन भी आज के दिन हुआ था। सन 2015 में रविंद्र जैन, जो भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक थे, उनका निधन भी आज के दिन हुआ था। सन 1909 में फातिमा शेख, जो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका ज्योति बाफुले सावित्री भाई फुले की सहयोगी थी, उन जिनका निधन आज के दिन हुआ था। दोस्तों, आज उत्कालमणि गोपाबंधु दास जी की पुण्यतिथि है। चलिए जानते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें। गोपाबंधु दास ओडिशा के एक सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं साहित्यकार थे। उनके उत्कृष्ट मानी के नाम से जाना जाता था। ओडिशा में राष्ट्रीय एवं स्वाधीनता संग्राम की बात चलाने पर लोग गोपाबंधु दास का नाम सर्वप्रथम लेते थे। ओडिशावासी उनको दरिद्र सखा, दरिद्र के सखा रूप से स्मरण करते हैं। ओडिशा के पुण्य क्षेत्र पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह दरबार के उत्तरी पार्श्वर में चौक के सामने उनकी एक संगमरमर की मूर्ति स्थापित है। उत्कल के विभिन्न अंचलों को संगठित कर पूर्णाक ओडिशा बनाने के लिए उन्होंने प्राणपण से चेष्टा की। उत्कल के विशिष्ट दैनिक पुत्र समाज के ये संस्थापक थे। गोपाबंधु दास का जन्म सन 1877 में पुरी जिले के सत्यवादी थाने के अंतर्गत सुआरो नामक एक श्रुद्ध पल्ली गांव में हुआ था। जून सन 1928 में केवल 53 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हुआ। बचपन से ही गोपाबंधु में कवियत्व का लक्षण स्पष्ट भाव से देखा गया था। स्कूल में पढ़ते समय ही ये सुंदर कविताएं लिखा करते थे। सरल भाषा में कविता लिखने की शैली उनसे ही आमभ्रप हुई। ओडिया साहित्य में वे एक नए युग के स्पष्ट हुए। उसी युग का नाम सत्यवादी युग है। सरलता और राष्ट्रीयता इस युग की विशेषताएं हैं। अवकांश चिंता, बंदिर आत्मकथा और धर्मपद प्रभृति पुस्तकों में से प्रत्येक ग्रंथ एक उज्ज्वल मणि है। बंदिर आत्मकथा जिस भाषा और शैली में लिखी गई है, ओडिया भाषा, उसे पढ़ते ही राष्ट्रीयता के भाव से अनुप्राणित हो उठते हैं। धर्मप्रद प्रस्तुक में कोणार्क मंदिर के निर्माण पर लिखे गए वर्णन को पढ़कर ओडिया लोग विशेष गौरव का अनुभव करते हैं। युद्ध ही ये सब छोटी छोटी पुस्तकें हैं, तथापि इनका प्रभाव उनके काव्यों से भी अधिक है। दोस्तों, आज टेरिटोरियल आर्मी डे भी है। भारत में प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को प्रादेशिक सेना दिवस मनाया जाता है। ये दिन देश की सुरक्षा और सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टेरिटोरियल आर्मी के वीर जवानों के सम्मान में मनाया जाता है।

प्रादेशिक सेना भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें ऐसे नागरिक शामिल होते हैं जो अपने सामान्य व्यवसाय या नौकरी के साथ साथ देश की सेवा के लिए भी तत्पर रहते हैं। प्रादेशिक सेना की स्थापना 9 अक्टूबर 1949 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना का सहायता प्रदान करना तथा देश की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सेवाओं में योगदान देना है। प्राकृतिक आपदा, युद्ध या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में प्रादेशिक सेना के जवान देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रादेशिक सेना के जवानों का जीवन समर्पण और अनुशासन का उदाहरण है। वे अपने सामान्य जीवन में अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन जब देश को उनकी आवश्यकता होती है तो वे अपने कर्तव्य को छोड़कर राष्ट्र सेवा के लिए आगे आते हैं। उनका ये त्याग और जिम्मेदारी देश के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। प्रादेशिक सेना के बार भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्यों में भी योगदान दिया है। पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी इसके जवानों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। इन जवानों का साहस, अनुशासन और देशभक्ति युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रादेशिक टेरिटोरियल आर्मी दिवस हमें उन सभी वीर जवानों को याद करने और सम्मान देने का अवसर देता है जो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें उनके त्याग, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण से प्रेरणा लेनी चाहिए। श्रोताओं, ये था आज का दिन यानी कि 9 अक्टूबर से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। चलिए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। चलिए पहला गाना हम सुनते हैं के और अंतरा मित्रा की आवाज़ में।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब आनंद लेते हैं और कुछ फिल्मी गानों का।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: श्रोताओं, आज है शुक्रवार। हर शुक्रवार की तरह आज भी आप सुनेंगे एक 2 मिनट का कैप्सूल मेरा गांव मेरा गीत, जिसे प्रस्तुत करेंगे जोगाई कमले।
1: नमस्कार, मेरा नाम जोगाई कमले निर्मय है। मैं हफलोंग में रहती हूँ और मेरा गांव का नाम है रजिबंगलो। मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम है फ्यंगफुई हायर सेकेंडरी स्कूल। आज मुझे बहुत खुशी है कि आकाशवाणी हफलोंग की तरफ से मेरा गांव मेरा गीत कार्यक्रम के अंतर्गत एक अपने मातृभाषा में एक गीत गुनगुनाने जा

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात, तत्पश्चात आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह।

0: और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
2: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों की सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
3: दूर दराज गांव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
2: कि ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीमावर्ती गाँवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गाँवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गाँवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुद्देशी हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और

0: चलती पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: गालिम लोशन,
2: गालिम लोशन, गालिम लोशन, गालिम लोशन, वो है गालिम लोशन।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग गालिम लोशन।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मदुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। TDK के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
3: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, TCS, विप्रो और SCL के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीत सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा।

0: उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आव्रजन अधिकारियों को दो कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रच्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of departmental summit on women and child development in New Delhi today. Government caps trade margins on non-scheduled anti-cancer drugs at 30% of MRP. Prices may fall by up to 70%. Counting of votes begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग, हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म

0: सॉन्ग भी सुनवाते हैं। और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर, नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग।
1: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सुरों की रंगोली कार्यक्रम। आज के सुरों की रंगोली कार्यक्रम पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी जगत के जाने माने गायक कलाकार पंकज उदास के गाए कुछ बेहतरीन गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का सुरों की रंगोली कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। चलिए अब आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से सुनते हैं पुआर आंचलिक बातोरी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पुआर आंचलिक बातुरी जो रिले किए गए थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आज की पहली सभा की, स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को आरंभ करने का। ये आनंद लेते हैं कुछ खिलमा भक्ति गीतों का। गायक कलाकार होंगे जेतलिन जेटे और उनके साथी।

0: श्रोताओं, गायक कलाकार जेटलिन जेटी और उनके साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे खिलमा भक्ति गीत। ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। आइए आप सुनते हैं रांगखोल लोकगीत स्वंथोई बोई रांगखोल और उनके साथियों की आवाज में।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

no.

0: श्रोताओं, गायक कलाकार संथोई भाई रांखोल और उनके साथियों के गाए इसी गीत के साथ ही हमारा आज का रांखोल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आइए अब सुनते हैं जयंतिया कार्यक्रम में कुछ जयंतिया भक्ति गीत गायक कलाकार मेलम भलंग पिरेंग और उनके साथियों की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिंत्या भक्ति गीत पेलम्बालम पेरेंग और उनके साथियों की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब पेश स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों की अंतिम पेशकश बेते भक्ति गीत की गायक कलाकार संगी लाल सिंह और उनके साथियों की आवाज़ में।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संगी लाल सिंह और उनके साथियों के गाए कुछ बेटे भक्ति गीत। इसी गीत के साथ ही हमारा आज का बीएटे कार्यक्रम और साथ ही यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम भी यहीं पर समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अब वक्त हो चला है विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनने का। मैं शर्मिला आप सभी से लेती हूँ इजाजत। अब आप आनंद लीजिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए गए विविध भारती के कार्यक्रमों का।
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संगीत जब आपकी पसंद का हो तो गीत और भी खास हो जाता है ना? तो आइए आज के इस फरमाइशी सफर में शामिल होते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद के गीत, आपकी प्यारी बातें और साथ ही हमारे एहसास। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ही कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
2: रहीम मिस्त्री बात कर रहे हैं, हुजूर साहिब नांदेड़ से।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रहीम जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर?
1: हम भी अच्छे हैं, देखिए और हेलो फरमाइश के जरिए और भी अच्छे हो जाते हैं आप सभी श्रोताओं से बात करके।
2: हाँ जी हाँ, सही, आपका हमारा मनोरंजन तो इतना बढ़िया, इतना भारी आता है विविध भारती, इतना अच्छा मजा आता है जब चलता है तो ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं और है, ऐसा है कि हम हमेशा रात के 11 बजे तक विविध भारती के प्रोग्राम सुनने में बड़ा मजा आता है।
1: अच्छा, तो क्या करते हैं साथ में आप विविध भारती का प्रोग्राम तो सुनते हैं?
2: है, मिस्त्री के साथ में बांधगा वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं।
1: बहुत बड़ा काम करते हैं आप, है ना? सर्दी गर्मी धूप बरसात कोई भी मौसम हो और घरों में बनाने के लिए आप तैयार रहते हैं।
2: जी हाँ, देखिए हम तो अच्छा रहना चाहते हैं, प्यार

0: से रहना चाहते हैं, जैसा सर्व धर्म संभाव बोल के चलते हैं, और हम सभी से कहते हैं कि अपने माता पिता के साथ रहो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा में स्वर्ग है, जन्नत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को थोड़े थोड़े बातों पे दुख दे रहे हैं, कभी उन्हें थोड़ा दुख हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमारे सबसे ज्यादा दुनिया में दूसरा रूप भगवान का माता पिता होते हैं, और माता पिताओं के साथ में रहना ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा भविष्य है।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी होगी और निश्चित रूप से आपने भी अपने माता पिता का ख्याल रखा होगा।
0: जी हाँ
1: जी, बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
0: जिनका नाम है मिस्टर नटवर लाल, परदेश किया ये सच्चे किया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए, कौन बोल रही हैं?
1: जी दीदी, कहते हैं नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। मैं तेरी खुशबू हूँ, आरजे शबनम अब्बासी है मेरा नाम। दीदी
0: क्या बात है, क्या बात है, शबनम जी बोल रही हैं, आरजे हैं आप?
1: जी जी दीदी। दीदी आज आपसे बहुत टाइम के बात हो रही है, मतलब लगभग एक साल हो चुका है मुझे कॉल करे हुए दीदी। जी दीदी, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या करना है दीदी, मतलब पार्लर में हम काम करते हैं तो थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता।
0: कोई बात नहीं, तो अपना काम पहले है ना, काम ही तो पूजा है। आप अपना काम कर रही हैं, वो आपकी रोजी रोटी होगी।
1: दीदी आपकी आवाज जब गूंजती है तो ये दिल करता है बस जल्दी से दीदी से बात हो जाए।
0: आवाज तो आपकी भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मुझे भी लग रहा है कि मैं आपसे घंटों बात करती रहूं।
1: थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। हमारे पार्लर में रेडियो बजता रहता है, हम सुनते रहते हैं, कस्टमर भी सुनते हैं।
0: क्या बात है, तो एक बात बताइए, कस्टमर के साथ किस तरह से व्यवहार करती हैं आप?
1: जब हम प्यार से उनसे बात करते हैं, जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं, जब हम प्यार से बात करेंगे तो वो हमारे पास दोबारा आएंगे। हम उनका मतलब जैसे पहले आते हैं तो हम उनको पानी पिलाते हैं, फिर प्यार से बात करते हैं, पूछते हैं ठंडा लोगे या गर्म लोगे, तो हमें हमारे पास वो जरूर आते हैं दीदी।
0: क्या बात है, जब आप प्यार दोगे तो लोग आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि प्यार बांटने से आपको सम्मान और प्यार वापस मिलता है ना?
1: देखो बड़ा हो या छोटा हो, जब हम प्यार देंगे तो प्यार लेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: ये फिल्म का नाम रहेगा दिल तेरा आशिक, उसका टाइटल सॉन्ग है, यही सुनवा देना दीदी।
0: आइए सुनते हैं ये बड़ा मस्ती भरा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: हम राजेंद्र जंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: जी बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: मैम जी हम तो बस अभी तो ड्यूटी चल रही है हमारी।
0: ड्यूटी चल रही है कहाँ?
1: जो लाइसेंस बनते हैं, हाँ, गाड़ियों के वाहन के, चाहे चार पहिया हो या दो पहिया हो या जितने बड़े वाहन हो, सभी के जो बनते हैं
0: वो काम करते हैं?
1: नहीं, इसमें ड्यूटी चल रही है।
0: अच्छा, क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपकी ड्यूटी के?
1: ड्यूटी तो खैर इसमें तो अभी तो चालू होने में बता रहे हैं कि इस महीने बाद चालू हो जाएगा, अभी तो हम अकेले ही हैं, बाकी 24 घंटे रहना पड़ता है मैम जी।
0: बहुत कठिन काम है ये तो, फिर परिवार के साथ समय बिता पाते हैं?
1: नहीं मैम जी, हम अकेली हैं, परिवार तो हमारा अंत है।
0: तो दैनिक दिनचर्या क्या रहती है आपकी?
1: दैनिक दिनचर्या यही रहती है कि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, टहलते हैं, टहलने में और काम भी करते रहते हैं मैम जी।
0: और अपने स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या का कितना ख्याल रखते हैं?
1: बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं कि अगर जैसे अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है तो ना ज्यादा धूप है, ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा सर्दी है, मीडियम सॉफ्ट है। जब मौसम बदलेगा तो हानिकारक तो होगा ही मैम जी। नींद भी पर्याप्त समय पे लेते हैं, जैसे 7 से 8 घंटे नींद तो जरूरी है मैम जी।
0: बिल्कुल अच्छी बात है। तो बताइए,
1: हाँ,
0: गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप?
1: मूवी का नाम है सौदागर, जाने के बोल है, तेरी याद आती है मैम जी, तो लाइने हैं, बोल दें, इजाजत हो आपकी।
0: सुनाइए।
1: जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की बात है, जो मुस्कुरा के जी ले आज को, उसका कल भी उसके साथ है।
0: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: आपका जिंदा श्रोता नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी मुंडा जी।
0: नाम क्या है आपका?
1: बालाजी दोनकले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। नांदेड़ से हमारा गांव 60 किलोमीटर है।
0: अच्छा, नांदेड़ से 60 किलोमीटर अंदर है आपका गाँव?
1: हो ग्राम विभाग का खेड़ गाँव है।
0: क्या नाम है?
1: खंड गाँव।
0: अरे वाह, बड़ा सुंदर नाम है।
1: अभी तो नया तालुका है, नया गांव, उसमें खंडगांव गांव है।
0: अच्छा, तो बताइए अपने गांव के बारे में, कैसा है आपका गांव?
1: अच्छी, सब आदमी, सभी गांव, सभी किसी के सुख दुख है। कौन सा ही कुछ दुख आया शादी के लिए, कुछ अनेक अनेक जो अलग कार्यक्रम है कुछ है, तो सभी आदमी मिलके करते हैं। कोई वाद नहीं, संटे नहीं, कोई नहीं। सभी आदमी इलेक्शन न हो या कौन सा ही कारण हो, एक दिन में न हो कि सभी आदमी एक तरफ बैठ के सभी कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम। बहुत अच्छे आदमी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर आज भी ये मानवता जिंदा है, सब मिलकर रहते हैं।
1: वो मंडा जी,
0: जी
1: आपने जो आज के फंड करे ना कार्यक्रम, क्या बढ़िया कार्यक्रम है। और मंचे है जी,
0: वो भी अच्छा लगता है आपको?
1: हो, और सेहत नामा का डॉक्टर है ना, उसकी जानकारी मिलके हर दवा के बारे में, हमारे ग्रामीण भाग में, हर ताजा वस्ती वाड़े में डॉक्टर का इंचार्ज क्या कर रहा है क्या नहीं, सब सुख दुख के कारण में सभी पहुँचते है ना।
0: बहुत अच्छी बात कही, सेहत नामा में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। और उस डॉक्टर से हम ये भी कहते हैं, जो भी डॉक्टर साहब आते हैं, कि हमारे ग्रामीण तबके के लोग भी इसे सुन रहे हैं, तो कृपया उस बात को इस तरीके से समझाइए कि हमारे ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण बच्चे भी उस बात को समझ पाए।
1: और इसीलिए जो महिलाओं का तो तुम्हारा सखी सहेली ना, हमारी महिला, हमारी पत्नी सभी मिलके वो कार्यक्रम सुनते हैं। हेलो सखी,
0: सखी सहेली भी सुनते हैं। अरे वाह, क्या बात है, हेलो सहेली सुनते हैं, है ना?
1: तो
0: बहुत अच्छी
1: जानकारी मिलती है ना, हर आदमी की, हर कहाँ से फोन लगा, कुछ मैडम ने हमारी जो बहन रहते है धन, उन्हें कहाँ से बात कर रहे हैं क्या नहीं, सब मिलता है ना हमारे लेडीज को।
0: हाँ बिल्कुल मिलता है, खुराक मिलती है आपको, मानसिक खुराक देता है विविध भारती आपको, है ना?
1: वो भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय चैनल बोले तो भारतीय देश में कहाँ भी जाओ।
0: चलिए, आपकी खुशी को हम महसूस कर रहे हैं, आप कितने खुश हैं विविध भारती को सुन के। अब बताइए कौन सा गाना आपके लिए आज पेश करें?
1: गोरा और काला धीरे धीरे बोल कोई।
0: सुनिए ये प्यारा सा गीत, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी दीदी, हम ग्राम चिड़ावत कंजर डेरे से बात कर रहा हूँ। मैं देवास जिला मध्य प्रदेश से।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: संतोष जी हाड़ा।
0: कैसे हैं आप? संतोष रखते हैं अपने जीवन में?
1: जी जी दीदी, आप लोगों का शुक्र है, बिल्कुल संतोषी है।
0: बस यही होना चाहिए ताकि जो है जीवन अच्छे से चले। क्या करते हैं आप संतोष जी, बताइए?
1: खेती गृहस्थी करते हैं दीदी।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में, क्या बोया है?
1: जी दीदी, सोयाबीन बोया था, अभी कटाई हुई है 4 दिन पहले।
0: और सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं?
1: नहीं, अब सोयाबीन की कटाई हो गई है, हम अब गेहूं, चना, लहसुन, प्याज की तैयारी करेंगे।
0: अच्छा, गेहूं, चना, लहसुन, प्याज की तैयारी करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले की तैयारी क्या होती है, जब आपको लगता है कि अब तो हमें खेत में ये बीज डालने हैं, तो किस तरह तैयार करते हैं आप अपने आप को?
1: दीदी इसमें क्या होता है, पहले तो 2 से 3 बार खेत को हाँकना पड़ता है, उसके बाद में रोडा रोटर एक मशीन है जो उसको मिट्टी को बिल्कुल एक में कर देती है, उसको ढाक के और फिर हम सरिया बना के पालियां, और उसमें जैसे लहसुन बोना है तो उसको चौपाई होती है, प्याज की चौपाई होती है, और गेहूं चना तो डायरेक्ट मशीन से डाल देते हैं और उसमें पानी छोड़ के पैदावार करते हैं।
0: मौसम खेती बाड़ी के लायक है?
1: हाँ, खुला है और हमारे इधर सूखा घोषित हो गया है दीदी। सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी गिरा था बरसात में, हमारे सोयाबीन पैदा हो गए और होल अभी से ही कमजोर चल रहे हैं।
0: अच्छा,
1: ऊपर वाला यदि पानी गिरा देता है तो बहुत फायदा हो जाएगा। जो हमारा देवास जिला है उसमें बहुत पानी कम है।
0: अच्छा, पर हिम्मत नहीं हारनी है आपको, मन छोटा नहीं करना है।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: हाँ, चलिए गाना बताइए कौन सा सुनेंगे।
1: बटवारा फिल्म का है दीदी, अरे वाह तेरे ढोला नैन मेरे जागे
0: जागे रे जागे। अरे वाह, ये गाना मुझे इतना पसंद है, आपने तो मेरी पसंद का गाना ही कह दिया यार। चलिए आपके साथ मैं भी इस गाने को जरूर सुनूंगी। आपको आपकी पसंद का गीत हम सुनवा देते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: जम्मू कश्मीर सोना मार्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: लतीफ जी, स्वागत है आपका। मौसम कैसा है बताइए।
1: यहाँ आज तो मौसम लगे बहुत गर्मी है, दिन में तो गर्मी रहता है, सुबह शाम ठंड रहता है।
0: तो ठंड कितनी रहती है, स्वेटर पहनना पड़ता है, शॉल ओढ़ना होता है या चलता है थोड़ा सा?
1: नहीं, वार्मल तो पहनना पड़ता है सुबह शाम, तो दिन में तो बहुत गर्मी रहता है, पसीना आ जाता है इतना गर्मी।
0: दिन की गर्मी परेशान कर देती है। आप क्या करते हैं लतीफ जी?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या है आपके खेत में अभी?
1: आज तो सरसों का बुआई करते हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, और कुछ नहीं होता?
1: होता है तो फसल की कटाई खत्म हो चुकी है ना सितंबर का महीने में, धान और मक्के की।
0: अच्छा, खेत में ही रहते हैं दिन भर?
1: नहीं, बाकी काम कर लेता है ना, जैसा अखरोट का अभी गिरी का मौका है, अभी गिरी निकालते हैं, अखरोट ये पैकिंग करते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा रहता है।
0: कैसे निकालते हैं अखरोट की गिरी, थोड़ा बताएंगे हमें?
1: ये थोड़ा निकालते हैं ना, अखरोट उठाते हैं, उसमें तो दो फाट गिरी निकालते हैं, वो निकालते हैं, तो फिर डब्बा में भरते हैं।
0: अच्छा, कोई मशीन होती है?
1: नहीं, हाथ से निकालते हैं।
0: अरे,
1: पत्थर पे तो, हाँ।
0: अच्छा, कितने अखरोट को तोड़ लेते हैं?
1: बस ये लगभग एक क्विंटल किसी को निकलता है, एक क्विंटल किसी को निकल जाता है, 40-50 किलो ऐसा ऐसा रहता है।
0: तो एक बात बताइए, जैसे अखरोट को जब हम तोड़ते हैं, हल्का हल्का एक नट क्रैकर आता है, उससे हम दबाते हैं तो टूट जाता है ना? आप कह रहे हो हाथ से करते हैं?
1: हाँ, हाथ ही, वो तो हल्का हो, उसको उतना ये नहीं होता है, ये छिलका पत्थर पे रखते हैं, फिर तो हथेड़ी से दब मारते वो तो तोड़ जाता है, फिर उसमें गिरी निकालते हैं।
0: तो गिरी चूरा भी नहीं होनी चाहिए निकालते समय, इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना?
1: बहुत ध्यान रखना पड़ता है,
0: बहुत मुश्किल काम है ये भाई।
1: अब तो मशीन आया ना इसका, उससे भी तोड़ते हैं।
0: चलिए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किल काम करते हैं आप।
1: बहुत मुश्किल, मेहनत तो अब यही है, रोजगार,
0: बिल्कुल
1: मेहनत करनी पड़ती।
0: आपने समय निकालकर विविध भारती आप सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
1: हाँ हाँ, सही बात सही बात। मैं दिल से सुनता हूँ, पिटारा ज्यादा सुनता हूँ, हेलो फरमाइश, सेहतनामा प्रोग्राम बहुत पसंद भी करता हूँ। सारे प्रोग्राम सुबह से लेके शाम तक प्रोग्राम आते हैं, वो मैं सुनता रहता हूँ, आज की फनकार भी सुनता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत खूब। गाना बताइए जो हम आपको सुनवाएं आपकी पसंद का।
1: फिल्म का नाम है किंग अंकल, लता मंगेशकर की आवाज में है वो, इन जहाँ की तुम्हारी आंखें।
0: तो बहुत ही प्यारा गीत सुनना चाहते हैं, हम मिलके सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: जिलो की नगरी उदयपुर राजस्थान से मुकेश जिंदर बोल रहा हूँ मैं।
0: क्या करते हैं मुकेश जी?
1: बाइक टू व्हीलर गाड़ी जो है सीट कवर के काम है।
0: तो क्या डिजाइन वाले बनाते हैं सीट कवर? आजकल तो कई तरह के डिजाइन आ गए हैं सीट कवर में मोटर बाइक के।
1: डिजाइन वाले बना देते हैं और ज्यादा प्लेन पसंद करते हैं।
0: प्लेन पसंद करते हैं
1: जी हाँ।
0: अच्छा, कपड़े का या वो जो वेलवेट आता है उसका या किस तरह?
1: वो लेदर के आते हैं अलग से, वो सीट कवर बनते हैं जो पानी वानी नहीं जाते हैं। लेदर वाले भी बनते हैं, सीट कवर वेलवेट वाले भी बनते हैं।
0: ज्यादा कौन से प्रचलन में है?
1: ये सीट कवर ही जो नॉर्मल आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं जो।
0: अच्छा,
1: पसंद करते हैं।
0: पर एक बात बताइए मुकेश जी, जब मैं स्कूटी चलाती थी तो उसमें ये जो सीट कवर नायलॉन के होते थे, या ये गर्मी के दिनों में तो हम बैठ ही नहीं पाते थे, जब बाहर आए ऑफिस से और हमने अपने स्कूटी या मोटर बाइक स्टार्ट की तो इतनी गर्म सीट हो जाती थी कि कई बार पानी डाल के ठंडा करना पड़ता था पहले उसे।
1: अभी क्या एक नेट वाला कवर आ रहा है, जाली वाला, वो लगाते हैं गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में।
0: हाँ,
1: कुछ जाली वाला आता है जो वो थोड़ा ठंडक रहता है, गर्म नहीं होती।
0: ये पते की बात कही आपने, क्योंकि वो सीट कवर इतना गर्म हो जाता था कि उससे तो कई दिक्कतें आ जाती थी और आदमी ढंग से चला भी नहीं पाता था दुपहिया वाहन। तो ये बदलाव आ गए हैं और आप बनाते रहते हैं तरह तरह के, तो कितने बना लेते हैं एक दिन में सीट कवर?
1: ये मेरी दुकान है ना, गैराज के ऊपर है। गैराज जितने आए जितने, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का काम करता हूँ, ऑटो के हुड वुड में सीट कवर ये भी बनाता हूँ।
0: तो फोर व्हीलर के जो सीट कवर बनते हैं या टू व्हीलर, इसमें कुछ अंतर होता है जो आप नहीं बना पाते हैं या?
1: सीटें बड़ी होती है, गाड़ी खड़ी रखने की भी जगह होनी चाहिए। हमारी छोटी दुकान है, छोटी गाड़ी टू व्हीलर आराम से खड़ा रह जाता है, दो गाड़ियाँ तीन गाड़ियाँ चार गाड़ियाँ खड़ी रह जाती है आराम से। उसके लिए जगह की भी स्पेस चाहिए ज्यादा बड़ी गाड़ियों के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए, आप तो उदयपुर में रहते हैं झीलों की नगरी में, कैसा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: उदयपुर में फिल्म गाया गाना है राजपूत का।
0: कौन सा?
1: मेरे संग संग आया यादों का मिला।
0: अरे वाह, ये उदयपुर में फिल्माया था?
1: उदयपुर राजस्थान, किशोर कुमार।
0: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी अच्छा है। मैं कम से कम एक महीने से प्रयास कर रहा था मैडम, तो इसके बाद इतना व्यस्त तो आज लगा है, तो बड़ा मुश्किल से लगा था, बेचारा अच्छा हुआ लग गया मैडम। और सबसे पहले आपको दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, आने वाले छठ पूजा की ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: अरे इतने सारी शुभकामनाएं एक साथ दे दी, कहाँ रखेंगे हम,
1: क्या बोलते कि खुशी में रखिएगा, बांटते
0: जी जी जी बिल्कुल। आपको भी सभी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, पर्वों की। क्या करते हैं आप चंद्रभान जी?
1: मैं साउथ ईस्टर्न कोर्ट फील्ड में नौकरी करता हूं मैडम, और नौकरी पीरियड में कई केंद्रों में फोन करता हूं, लाइव फोनिंग कार्यक्रम में जुड़ता हूं, रिकॉर्डिंग में जुड़ता हूं, ईमेल में जुड़ता हूं, बड़ा मोबाइल में बात करता हूं, छोटा मोबाइल में प्रसारण सुनता हूं, सभी केंद्र का सुनते रहता हूं। बहुत केंद्र का मेरा प्रसारण आया मैडम, और आपके केंद्र में लगा बहुत अच्छा लगा। आज मैं दिशा मूर्ति में मनोरंजन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम, और गीत के बोल है खींच मेरी फोटो, गायिका है नितिन मोहन, दर्शन रावल और अन्य गायक हैं।
0: तो आप सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: काइले नगर से बात कर रहा मच्छिंद्र हरिदास चांडवले। मैं कुछ जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का, तो पहली पहचान करने वाली अपनी गुरु होती है माता जी, उसके बाद पिताजी होते हैं, पिताजी के बाद शिक्षक होते हैं, शिक्षक के बाद जो अपने को आध्यात्म वाला जो गुरु मिलता है उसको हम बोलते हैं, जो आपने आंख पे जो मोती बिंदु की पट्टी रहती वो निकलने वाला गुरु मांगता जिंदगी में, तो वो सही रहती वो माँ, सब सुख दुख झेल के सब काम करके अपने को छोटे से बड़ा करती, तो आप उन सबका कर्ज अदा कर सकते, माँ का दूध का कर्ज जिंदगी में कभी अदा नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो।
1: हमारे माँ से पिताजी से जो संस्कार आए ले, हमने हमारे माता जी पिताजी को कभी नहीं बोले।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने मच्छिंद्र जी।
1: अभी मेरा वीर भारती का दुकान में कार्यक्रम चालू है, मेरा टेलर काम का बिजनेस है, तो मैं ये बिजनेस कर रहे हैं 50 साल से,
0: बचपन
1: स्कूल में चौथी में से था जब तक तो आज तक लेके हम विविध भारती बचपन से सुन के बड़े होते आएले। और आप जो लोग जो कार्यक्रम करते हैं एक से एक तक का सही सब कार्यक्रम, मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम त्रिवेणी में कुछ जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: दीदी मैं सभी विविध भारती परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको मैं जो स्थापना दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा।
1: चलिए अच्छी बात है, हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बताइए क्या आपने वो स्थापना दिवस का जो लाइव ब्रॉडकास्ट था 11 बजे से शाम 4 बजे तक?
0: बहुत ही शानदार प्रोग्राम थे, बहुत ही अच्छा लगा, दिन भर बहुत ही आनंद आता रहा। हम तो दिन भर चालू करके लगातार सुन ही रहे थे। जो प्रस्तुति थी और जिन कलाकारों को बुलाया गया दीदी, बहुत ही काबिले तारीफ। विविध भारती में राष्ट्रीय सेवा परिवार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी ऐसी ही चीजें आती रहे बहुत ही अच्छा लगता है। जी
1: आपने उसमें अपने विचार प्रकट किए थे, कुछ लिखा किसी विशेष के लिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, शिरकत की थी?
0: जी, सभी प्रोग्राम में जितने भी लाइव चल रहे थे सभी में कमेंट और सभी में किया हुआ। दीदी मैं नियमित श्रोता फेसबुक से भी जुड़ा रहता हूँ, हर प्रोग्राम हर पोस्ट पे आपको कमेंट रहेगा ही रहेगा दीदी।
1: हाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लगभग जो कार्यक्रम है वो श्रोताओं को फेसबुक से हम लोग जुड़े रहते हैं और तब करते हैं, तो आपकी जो टिप्पणियाँ हैं संदेश हैं वो बहुत जरूरी हो जाते हैं किसी खास प्रोग्राम के लिए जब वो लाइव हो।
0: जी दीदी बहुत ही अच्छे प्रोग्राम थे।
1: तो हम भी अपने सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमें संदेश भेजते रहे और हमारे इस खुशी में वो भी शामिल थे क्योंकि उन्हीं की है विविध भारती। बताइए अभिषेक जी कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
0: 1989 की पिक्चर है भ्रष्टाचार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया, आनंद बख्शी जी के बोल हैं और अनुराधा पोरवाल और सुरेश वाडेकर जी ने गीत को गाया है। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं।
1: आइए सुने आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222-8670288, 0224-00-24662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: पंकज उदास की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कलाम था राजेश रेड्डी का, मौसीकी पंकज उदास की, एल्बम का नाम था नबील।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: तलत अजीज की आवाज में ये था कतील शिफाई का कलाम।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मिताली मुखर्जी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

0: सिर को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।
1: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, हमें तो इन हसीनों की नजर ने मार डाला है। नजर जो उठी तो दुआ बन गई, नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। नजर जब उठी मेहरबा हो गई, नजर जब मिली तो जवा हो गई, जो पलटी तो दिल की जबा हो गई, जो बदली तो एक दास्ता हो गई। नजर से हमने नजर को एक दिन नजर मिलाते नजर से देखा, नजर जो पहुंची नजर तक उनकी, नजर झुकाते नजर से देखा।
2: क्या बात है,
1: दिले

झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी, सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ऐ सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा तुम्हारा काम झूठा, तुम्हारा मैं कदा झूठा तुम्हारा जाम भी झूठा, तुम्हारी रात झूठी चांद झूठा आसमां झूठा।

रही के कोई बेमुरव्वत नहीं, प्यार करने की अब हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें

कुर्बान होता है, जो अच्छी चीज होती है उधर ही ध्यान होता है। किया था वादा कि कल आएंगे चराग जले और तमाम रात चरागों से दिल के दाग जले। ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है, ये जितनी भी दौलत है सब तेरी बदौलत है। बराबर खफा हो बराबर मनाए, ना तुम बाज आओ ना हम बाज आए, क्योंकि भीगी जुल्फों को शानों पर झटक कर छोड़ देते हैं। बरसने वाले बादल अपना भी रुख मोड़ लेते हैं, और ये हुस्न वाले जब भी लेते हैं अंगड़ाई तो खुदा

0: दिलावर बाबू और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये कव्वाली।
1: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।
3: तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
1: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। रेखा भारद्वाज की आवाज है ये।

0: रेखा भारद्वाज की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे संजय आनंद झा। आइए अब सुनते हैं सनसेट पॉइंट एल्बम से भूपेंद्र की आवाज में ये रचना। रचना है गुलजार की, संगीतकार विशाल भारद्वाज।
1: रात कच्ची पड़ रही थी, कोई पंछी पास के पेड़ से उड़ा।
0: ये आवाज गुलजार की है।
1: आसमान की तरफ निकल गया। वो पुल के उस किनारे पर आकर खड़ी हो गई जहां से अगला कदम जिंदगी का आखिरी कदम था। एक भोले भाले भेड़ के बच्चे ने उसे रोक लिया। गडरिये भटके

राह दिखाती हैं, ईसा भी यही करते थे। उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने घर ले गया। अरे ताल से पानी सूखा है, आसमान तो नहीं सूख गया? फिर मेघ आएगा, फिर जल भरेगा, चल।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओ।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद को 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 4,876 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मधुरांतकम में टीवीके और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मधुरांतकम और दारापुरम उपचुनावों में सत्ताधारी टीवीके पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को चार हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में EDAR, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी।

0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंध्र कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिक्काल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है, आइए पुनः आनंद लेते हैं मुंबई केंद्र से रिले किए गए विद भारती के कार्यक्रम की।
2: सिलसिला फिल्म का गाना है अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल हैं, शिव हरी का संगीत।
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गाना है ये। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं।

0: खूबसूरत फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार राहुल देवबर्मन। विविध भारती से ये है कार्यक्रम यादों की महफिल। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म उमराव जान, आशा भोसले की आवाज, शहर यार के बोल, खयाम की तर्ज।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

इजाजत फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। ये घर फिल्म का गाना है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
4: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
3: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
4: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं
5: करना है। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
3: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर 4:00 से और 11 अक्टूबर 10:00 से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: सौतन की बेटी इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। रचना थी सावन कुमार की, संगीतकार थे वेदपाल। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब जिद

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दिल्ली में दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर भारी यातायात की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ TVK के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत

0: की यात्रा पर रहेगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत के संकल्प और देश तथा उसके नागरिकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 756 अंक बढ़कर 72,350 पर, जबकि निफ्टी 253 अंक बढ़कर 22,485 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी के यह हफलंग केंद्र है, आइए पुनः आनंद लेते हैं मुंबई केंद्र से रिले किए गए विविध भारती के कार्यक्रम की।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी कर।

डाकिया डाक लाया भाई किसके यहाँ अभी भी डाकिया आते हैं और चिट्ठी ले आते हैं, हमारे घर तो आते हैं और हमें तो आज भी इंतज़ार रहता है चिट्ठियों का, पत्रिकाओं का, किताबों का। आपको इंतज़ार रहता है क्या? इंतज़ार कीजिए और आप कुछ ऐसा कीजिए कि डाकिया आपके घर आपके दरवाजे पर दस्तक दे। थोड़ी स्टाइल बदल गई है इस गाने में, डाकिया साइकिल से आ रहे हैं और लोग दौड़ रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, पैदल भी आते हैं, बाइक से आते हैं, ऑटो रिक्शा से आते हैं। बहरहाल इंतज़ार कीजिए तो डाकिया आया करेंगे, और अगर आपको लगता है कि हाँ चिट्ठियाँ आती रहें तो पहले आप तो लिखिए चिट्ठियाँ। किसको लिखते हैं आप चिट्ठी, और क्या आज भी कभी किसी मौके पर चिट्ठी लिखते हैं? कुछ ख़ास त्यौहार हैं जहाँ पर बगैर चिट्ठी के काम नहीं चलता है, जैसे कि राखी का त्यौहार है, बहन भाई को चिट्ठी ज़रूर लिखती है, भाई बहन को चिट्ठी ज़रूर लिखते हैं। आप कब किन मौक़ों पर लिखते हैं? एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अतीत के गलियारे खोल दिए और मैं हॉस्टल की यादों में खो गई, कैसी चिट्ठियाँ सभी की आती थी और हम सब बेल बजाने का इंतजार करते थे, चिट्ठियां लेने के लिए उत्सुक रहते थे, जिनकी चिट्ठी नहीं आती थी वो निराश हो जाती थी। हॉस्टल वार्डन हमेशा आश्वासन देती थी कि कल जरूर पत्र आएगा। तो अब जरा बताइए कि ये जो इंतजार वाला लम्हा है, बहुत सारी फिल्मों में भी है, किस फिल्म में खत पढ़ने वाला दृश्य है, किस फिल्म में आपने देखी कोई फिल्म जिसमें कि पत्र का इंतजार हो रहा है? और वो गाने भी सुझाते चलिए, वो फिल्में भी सुझाते चलिए। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी थे इस फिल्म में, बहुत त्वरित जवाब दिया है। एक श्रोता ने शिकायत लिखी है, भाई पत्र में शिकायतें भी लिखी जाती थी,

जैसे कि बहुत सारी बातें, अरे आपने तो चिट्ठी का जवाब जल्द नहीं दिया, इतने दिन हो गए और आप तो आए नहीं, और हमने कितना इंतज़ार किया, और भी बहुत सारी शिकायतें होती हैं। आप कौन सी शिकायत किया करते थे? हमारी एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि दो बार डाला कमेंट लेकिन किसी को दिख ही नहीं रहा, शायद आपको भी नहीं दिख रहा है ममता जी। मैं क्या करूँ, ऐसा दो तीन दिन में एक बार होता ही है। भाई हमें तो दिख गया, लेकिन शिकायत के अलावा कोई बात भी तो लिखिए कि हम श्रोताओं तक आपकी बात पहुंचा दें, चिट्ठी से जुड़ी हुई। एक श्रोता ने लिखा है कि तेरा खत लेके सनम पांव कहीं रखते हैं हम। फिल्म के इस गाने में नायिका चिट्ठी पढ़कर बेहद खुश है। कभी कभी किसी की चिट्ठी आने पर इस तरह की खुशी मिलती है, और दरवाजे बंद कर ऐसे ही हाव भाव हुआ करते थे, और किसी के सामने नहीं पढ़ना होता था, उसे छुपा कर ही पढ़ा जाता था, क्योंकि चिट्ठियां भावनात्मक लगाव से जुड़ी होती थी और आँखों को पनीली कर देती थी। तो बताइए ज़रा कि आपने कौन सा पत्र ऐसा पढ़ा है कि आपको छुपाने की ज़रूरत पड़ी, किसको लिखा था वो पत्र कि आपने छुपाया। हालांकि बहुत सारे पत्र छुपा कर लिखे जाते थे, बहरहाल चिट्ठियों में फूल भी भेजे जाते थे और गुलाब की पंखड़ी चिपकाई जाती थी, और एक विद्यापति आती थी वो भी चिपका दिया जाता था जब कुछ पढ़ने लिखने की बात होती थी। आपने कभी गुलाब या कोई फूल चिपका कर भेजा है? ज़रा बताइए, ये तो फिल्म का नाम तो आप बूझ गए, सरस्वती चंद्र, इसमें कौन है हीरोइन? हीरोइन का नाम पूछना है आपको, चाहे तो हीरो का नाम भी बता सकते हैं।

फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है। बहुत सारे श्रोताओं से हमने पूछा कि भाई आपने भी कभी फूल भेजा था, तो अभी तक तो जवाब नहीं आया, लेकिन अगर हाँ आपने कभी पत्र में फूल रखकर

भेजा था तो ज़रूर बताइए। और फूल मुरझा जाते थे लेकिन उसकी खुशबू बाकी रहती थी। जब कभी कई साल बाद वो चिट्ठी निकाली तो उसमें मुरझाया हुआ फूल, लेकिन ऐसे लगता था वो ताजगी वापस लौट आई है, वो खुशबू वापस लौट आई है। हमने पूछा था कौन है हीरोइन नूतन, सभी श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया और मनीष और साथ में सुलोचना भी हैं इस फिल्म में। एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही लम्हों के बाद लाजवाब प्रस्तुति में सुरीला सफ़र शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही शुरू होगा ममता जी द्वारा पूछे जाने वाले एक से बढ़कर एक दिलचस्प सवालों का सिलसिला। तो हम भी कमर कस के आपके पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो फिर दीजिए उत्तर फटाफट। और जब ये हम पहली पूछते हैं तो पहली का जवाब तो आप फटाफट दे ही देते हैं, साथ में ये भी बताते चलिए कि चिट्ठी आप अभी भी लिखते हैं या नहीं। किसका पत्र आपके नाम आया और बड़ा लंबा हुआ करता था पत्र, क्योंकि कई लोग पत्र लंबे लिखने के आदि होते हैं, कि जैसे किसी के घर में भाई होते हैं लंबा पत्र लिखते हैं, कुछ कविताएँ भी उसमें लिख देते हैं, कुछ थोड़े से किस्से भी बयां कर देते हैं, बहुत तफसील से और फुर्सत से पत्र लिखते हैं। ऐसा कोई पत्र आपके पास है, संभाल कर रखा है, आपने कोई चिट्ठी संभाल कर रखी है तो ज़रूर बताइए। अब जो श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा पूछा जाने वाला पहला प्रश्न शायद यही होगा कि बताइए अपनी पहली बार सबसे पहले खत किसको लिखा था। क्या बात है भाई, ज़रूर बताइए। और अब दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि बताइए आपने विविध भारती में कभी कोई पत्र लिखा है, बिल्कुल ये भी हम पूछ रहे हैं। और हमारी ओर से जो आप सवाल कर रहे हैं ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर बताइए, क्योंकि हमने तो विविध भारती के नाम पत्र लिखे थे, पत्रावली कार्यक्रम में शामिल भी हुआ था, तो आपकी कोई याद है तो ज़रूर साझा कीजिए। और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भी आप पत्र लिखते ही होंगे तो वो भी आप बता सकते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गीत सुनाए जा रहे होंगे और हम भी आनंदित होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और शुरू से आखिरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि डाकिया जो खाकी वर्दी में होते थे बरोठे की कुंडी खड़खड़ाकर जोर की आवाज लगाते थे, सारे घर के लोग सब काम छोड़कर घर के दरवाजे पर दौड़ पड़ते थे, किसकी चिट्ठी है, किसके नाम आई है, फिर डाकिया एक एक करके जो पोस्ट आती थी दे देकर चले जाते थे, फिर सब पहले चिट्ठी पढ़ते थे बाद में बाकी काम, और बहुत अच्छी बुरी खबर देने का काम तार करता था पति या घर के, और आदमी जो बाहर काम करते थे तो पहली तारीख को मनी ऑर्डर का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से होता था। वो हड़बड़ाहट, वो बेचैनी, वो सिर्फ एक डाकिया की वजह से ही संभव होता था, पर अब वो ज़माना कहाँ, एक सेकंड भी नहीं लगते खबर पैसा और हालचाल आदान प्रदान करने में। बिल्कुल सही बात है, रक्षाबंधन में राखी हो या भाई दूज में टीका, सब डाकिया ही बाहर पहुँचाते थे, और डाकिया का बड़े बेसब्री से इंतज़ार होता था, डाकिया का लोग स्वागत करते थे उन्हें, गाँव में तो बाकायदा गुड़ की डली ले आते थे, गुड़ और पानी पिलाया करते थे, लोग दरवाजे पर अपने खाट बिछाकर उनका स्वागत करते थे, अगर कोई अच्छी खबर ले आते थे तो उनके साथ देर तक गुफ्तगू होती थी, फिर पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर सुनते थे पत्र, पढ़ने वाला कोई एक होता था, सुनने वाले सभी, और सबकी आंखें नम होती थी, कोई अपने आंचल से आंसू पोंछ रहा होता था, कोई रुमाल से, बहरहाल बहुत सारी यादें हैं, आप अपनी यादें साझा कीजिए। और अब अगला गाना ये

अर्धांगिनी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत था। और श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि हमें फिल्म का नाम नहीं पता, बता दिया हमने। और एक श्रोता ने लिखा है कि लंबा पत्र प्रेमिकाओं और पत्नी को लिखी जाती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अपने गर्लफ्रेंड को गुलाब फूल दिया और वो फूल एक दिन अपने पिता के सामने मिल गया, खोलते समय मैंने बुक में दिया था, अब वो मेरे साथ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्रों में फूल आदि चिपका कर देने की असफल कोशिश मैंने भी बहुत बार की है, मगर बदले में हर बार मेरे मुंह पर किसी न किसी का हाथ ही चिपका है। और एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठी न आने का दर्द बॉर्डर फिल्म में देखा था, और जब चिट्ठी आती है तो पढ़कर सुनाने का वाकया भी बड़ा मज़ेदार है। गाना बजता है, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, ये पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। सचमुच ये चिट्ठी वाली बातें और चिट्ठी वाले गाने बेहद मार्मिक हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो खुशबू से भरी चिट्ठियां महका देती थी, रोम रोम को संवेदनाओं से भरे शब्द कितने सुकून भरते थे, और हाँ, हर रोज़ 11 बजे पोस्टमैन का इंतज़ार सबको रहता था। और एक श्रोता ने बताया है कि उपन्यास गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी के उपन्यास से बनी फिल्म थी सरस्वती चंद्र। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ज़्यादातर खत मामा जी को राखी पर भेजती थी और मुझसे लिखवाती थी। उसमें सबसे पहली लाइन होती थी, आदरणीय मामा जी, यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा करती हूँ वहाँ भी सब कुशल मंगल से होंगे, मुझे बहुत याद आता है वो सब। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं एक बंगालन हूँ, सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के पत्रावली कार्यक्रम में चिट्ठी लिखने के लिए मैं अपने आप बगैर हिंदी की कोई औपचारिक तालीम के हिंदी सीखी, वो भी विविध भारती सुन सुन कर। क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ज़्यादा उस दौर में आने वाले हल्के पीले रंग का पोस्ट कार्ड और उसके साथ जवाबी पोस्ट कार्ड भी साथ में आते थे, जब पोस्ट कार्ड को अन्य व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। अंतर्देशी पत्र जो नीले रंग का चारों तरफ से पैक हो जाता था, उसे दूसरा नहीं पढ़ सकता था। इसके अलावा बैरंग चिट्ठी, ये एक सफ़ेद कागज़ पर लिखे जाने वाला अपनी व्यथा का पत्र होता था, जिसका पेमेंट पेनल्टी के रूप में जिसके पास पहुँचता था वो अदा करते थे। कई बार बहुत आर्थिक तंगी के कारण भी कुछ चिट्ठियां बैरंग आती थीं, जो आपको अदा करना पड़ता था, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाम अभी भी पत्र आते हैं, वे बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने कार्य में बहुत ही कुशल हैं वो जो चिट्ठी पहुंचाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सगाई और शादी के बीच 6 माह का गैप होने के कारण हम दोनों का पत्रों का सिलसिला चला, वो चिट्ठियां हमने आज भी सहेज कर रखी, उस लिफाफे को हमने दिया है अमोल लेने दी, और 36 बरस हो गए। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अमीन साहनी साहब को पत्र लिखा था। और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं अपनी बातें, अपने जज्बात। तो आप भी अगर आपने नहीं लिखा तो लिखिए, और ज़रा बताइए फिल्म का नाम और कौन है हीरो हीरोइन।

कन्यादान फिल्म का ये गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन। शशि कपूर और आशा पारेख हैं और सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया है। इधर हमने सवाल पूछा नहीं कि उधर जवाब आने शुरू हो गए। वही साथ में अपनी बातें और यादें भी साझा करते चलिए कि किनके पत्र आपने संभाल के रखे हैं। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमने तो आज भी कुछ चिट्ठियाँ संभाल के रखी हैं, क्या आपने भी रखी हैं? वैसे जब ये बात आती है, संभाल के रखने की बात आती है, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब जगह नहीं बची है। भाई, बाकी चीज़ों के लिए आपके पास जगह है, लेकिन किसी की लिखी चिट्ठी के लिए जगह नहीं है। किसके पत्र आपके पास ज़्यादा आते थे, ज़रा ये बताइए। सहेलियों के पत्र, पिता के पत्र, पति का या फिर किसी और का? क्या एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे को पत्र लिखा है? कई बार, एक ज़माना था जब लड़कियाँ बहुत जल्द से घर से नहीं निकलने पाती थी, तो वो पत्रों से अपनी बात एक दूसरे से, अपनी सहेलियों से साझा करती थी। क्या आपने भी ऐसा किया है? एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पास मेरे पापा जी का पत्र है, अब वो नहीं है पर पत्र में उनकी यादें हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज छत्तीसगढ़ के एक डाकिये की याद आ गई जो ठीक 11 बजे आया करता था। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मैंने विविध भारती के नाम पत्र लिखे मनचाहे गीत में, अब तो पोस्ट कार्ड आसानी से नहीं मिलते हैं और पत्र वाला डब्बा भी नहीं मिलता है, मतलब पोस्ट बॉक्स भी आसानी से नहीं मिलते हैं। भाई, अगर शौक है तो विविध भारती के नाम तो आप पत्र लिख ही सकते हैं। वैसे भी अभी लंबी तादाद में श्रोताओं के पत्र आज भी आते हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो पहली बार और सिर्फ एक ही खत मेरी दीदी ने मेरे लिए भिजवाया था, मेरी छोटी बहन के हाथों। वो खत आज भी मेरे पास है, पर अब न ही मेरी दीदी मेरे साथ है न छोटी बहन। मैं जब भी

पढ़ती हूँ आंखें नम हो जाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपका खत मिला फिल्म शारदा रामेश्वरी पर ये फिल्माया गया हुआ है, मतलब जो मैंने पूछा था कि कोई फिल्म की सिचुएशन जहाँ पर खत है, पत्र पढ़ा जा रहा है, हकीकत फिल्म में भी एक दृश्य आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात बहुत हंसी की है, मैं आप सबको लेकिन बताऊंगा। उस समय 16 बरस का रहा होऊंगा, मैंने एक लड़की को चुपके से एक पर्ची में कुछ लिखने के बाद उस पर्ची को किसी बच्चे के हाथों उस लड़की को देने के लिए कहा, लेकिन वो पर्ची लेकर उस लड़की की मम्मी को दे आया। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसे विषय को आज आपने छेड़ दिया है जिससे 90% श्रोताओं का अतीत जुड़ा हुआ है, अतः सभी अपने अतीत को खंगाल अनुभवों को साझा करने में जुटे हुए हैं, तो जरा जल्दी अतीत को साझा कीजिए क्योंकि अब घड़ी की ओर देखिए 1:30 हो रहे हैं, तो अब आधे घंटे और हैं आपके पास। जल्दी जल्दी अपनी अतीत की बातें साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है पत्र, गांव से शहर पढ़ने आया तब घर वालों से खत के द्वारा ही संदेश का आदान प्रदान होता था और तब उन संदेशों का बड़ी बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, आपको बूझना है एक बार फिर कौन है हीरो कौन हीरोइन।

तीन देवियां फिल्म का गाना था और सभी श्रोताओं ने सही बूझा है, देव आनंद और नंदा पर फिल्माया गया था ये गाना और सचिन देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत था। और बहुत सारे श्रोता अपनी यादें साझा कर रहे हैं, सचमुच हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी यादें और बातें पढ़ते हुए और आपको पढ़कर सुनाते हुए। ऐसे लग रहा है कि हम भी कोई पत्र लिए हैं पढ़कर सुना रहे हैं और आप सभी हमारी आंखों के सामने माइक्रोफोन के सामने बैठे हुए हैं विविध भारती के स्टूडियो में। सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो काफ़ी पत्र उनको लिखा है, मतलब हमारे एक श्रोता ने लिखा है, ये लिखी है ये बात बहुत पहले, पर वे उन्हें संभाल कर रखे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये एक तरफ डैश डैश डैश रहा है। भाई पता कर लेना चाहिए था ना चिट्ठियों के माध्यम से। एक श्रोता ने लिखा है कि आर्मी में ड्यूटी के दौरान अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली इलाकों में घर वालों की चिट्ठियां बहुत देर से मिलती थी, पढ़ने के बाद सुकून मिल जाता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि फरमाइशी कार्यक्रम में एकमात्र पत्र लिखा गया जो शामिल भी हुआ था आकाशवाणी ग्वालियर में। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेरे साथी दोस्तों के पत्र ज़्यादा आते थे, हम जब पढ़ाई करते हुए स्कूल से कॉलेज गए तब बिछड़ गए थे। इस समय हम एक दूसरे को खत लिखा करते थे। एक श्रोता की टिप्पणी है, जब मेरी शादी होकर राजस्थान गई, दिल्ली से मम्मी पापा खत लिखते थे, मैं भी उन्हें लिखती। मेरी माँ बाबूजी के खत आज भी मेरे पास संभाल कर रखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक मेरे कमेंट ना पढ़ें कोई बात नहीं, पर विविध भारती से शिकायत वाला पत्र तो पढ़िए। दो अन्य बहनों ने भी विविध भारती के अक्षम में लापरवाही बताई है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि ये शिकायती प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको विविध भारती के किसी कार्यक्रम से शिकायत है तो कृपया मेल पर आप शिकायत भेज सकते हैं। ये तो सुरीला सफ़र इसका नाम है, सुरीली बातें सुरीली गाने। अगर हाँ इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई कोई बात है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हम शामिल करें ना करें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई बात हम ज़रूर शामिल करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने आज भी अपना अपॉइंटमेंट लेटर संभाल कर रखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अब कोई पत्र नहीं भेजता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमने तो सबसे ज़्यादा पत्र लिखे अपने दादाजी को, वो बहुत रोते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैंने प्यार किया फिल्म देखी थी तो वो कबूतर वाले गाने को देखकर हमने पोस्ट कार्ड को कबूतर के आकार में काट कर चाचा चाची को पत्र लिखते थे। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, खत के बारे में मेरी एक याद है जो बहुत ही मजाकिया है। एक लड़के ने मुझे खत लिखा था और मैंने पढ़ने के बाद उसको जमीन में दबा दिया था। उसके बाद मैं भूल गई वो जगह कहाँ थी। क्या बात है भाई, लगता है घर वालों से छुपाई होगी बात। बेहतर बात ये होती कि आप घर वालों को बता देती कि ये पत्र आया है फलाने की ओर से, या जो भी नाम था। बहरहाल चलिए, अब बहुत सारी बातें आ रही हैं और हम गानों के बीच बीच में पढ़ते जाएंगे। ज़रा ये गाना सुनिए और बूझिए कौन है हीरो कौन है हीरोइन। फिल्म का नाम तो बता ही सकते हैं आप।

शक्ति फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत था, अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया था ये गाना। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है इसका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब खत की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा तुझे कागज वही हमने लिखा कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई, अब ज़माना और है, ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए ही मोहब्बत का इजहार हो जाता है, लेकिन उसमें वो रूह नहीं। आज भी हम ख़त पर विश्वास करते हैं, माँ पिता का पत्र, प्रेमी या किसी सहेली का पत्र, क्योंकि उन पत्रों के शब्दों में होती है आत्मीयता, लिखावट से पता चलती है प्रेषक की तन्मयता, और पत्र पढ़ते समय पत्रों में से झांकता है चेहरा लिखने वाले का। क्या बात है भाई, अब तो मोबाइल के ज़रिए अगर प्रेम का इजहार होता है तो तुरंत इमोजी के ज़रिए पता चल जाता है, या तुरंत शब्दों के ज़रिए, वाक्यों के ज़रिए। तब जब पत्र लिखे जाते थे, प्रेम पत्र, तो इंतज़ार होता था, इंतज़ार में रात भर आँखें तकती थीं कि कब वो उस पत्र का जवाब आएगा। कभी ऐसा भी अनुभव आपके साथ हुआ होगा, और ये इंतज़ार होता था कि लिखने वाला कब लिखेगा, क्या लिखेगा, जाने कौन सी बात होगी, ये भी जिज्ञासा हुआ करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं होते थे, उनमें लिखने वाले का प्यार, आशीर्वाद, भावनाओं और स्नेह का स्नेह छिपा होता था। उन पत्रों का इंतज़ार और उन्हें पढ़ना भी कितना खूबसूरत होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि ख़त में एक ऐसा शब्द है जो बरसों जैसे लगते हुए इंतज़ार की घड़ियों को ख़त्म कर देता ज़रूर है, पर आगे इंतज़ार को बहुत पीड़ादायक बना देता है। ख़त को लिखते हुए हर उस शख्स के उंगलियों का स्पर्श, उनके ख्वाब, उनके भाव और प्यार, सभी उस लिफाफे में बंद होकर हम तक पहुंचाया जाता रहा है, जिसके आते ही धड़कनें बढ़ जाती थीं। सचमुच कुछ पत्र पढ़ते हुए दिल की धड़कनें तेज़ हो जाया करती थीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या आपने इस गाने के बारे में सोचा था। और हाँ, आगे कुछ श्रोता अगर गाने सुझा रहे हैं तो वो गाना हम आपको सुनवाएंगे। सुनिए ये गाना और बताइए कौन है हीरो, कौन है हीरोइन।

फिल्म थी आए दिन बहार की, आशा भोसले की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया। आशा पारिख हीरोइन होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि डाक प्रणाली का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि इसका विकास प्राचीन सभ्यताओं के साथ धीरे धीरे हुआ है। और बहुत सारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक गज़ल याद आती है, प्यार का पहला खत लिखने में देर तो लगती है। सच में ऐसा ही होता था, कई पन्ने फाड़कर खत लिखे जाते थे, सचमुच संतुष्टि नहीं होती थी दोबारा तिबारा। अब तो ऐसा धीरज बचा ही नहीं है, जैसे तैसे एक पत्र लिख दिया बस काफ़ी है, फिर ये समझ में नहीं आता दो लाइन लिखने के बाद कि अब क्या लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र की शुरुआत हम करते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु। बहुत सारे लोग ऐसे लिखा करते थे, हम भी ऐसे ही शुरुआत करते थे, पहले सामने वाले का नाम और संबोधन, प्रणाम नमस्कार, उसके बाद ये। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे दादा ने अपने ही घर के एड्रेस पर शुभकामना का पोस्ट कार्ड भेजा था ताकि पोस्ट कार्ड पर जो तारीख का स्टैंप लगाया जाता है ये प्रूफ अपने पास रहे। क्या बात है भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने हेलो फरमाइश आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में अपनी बातचीत और अपनी पसंद शामिल होने पर हर बार व्यक्तिगत आभार के पत्र लिखे थे, पर हाँ एक बात ज़रूर की थी कि किसी महिला प्रस्तुतकर्ता को पत्र लिखा था, तब पते में उनका नाम नहीं पर अन्य कोई साथी उद्घोषक का नाम लिखकर उनको पहली लाइन में विनती की थी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब खत की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक इस रक्षाबंधन पर हमने 100 से ज़्यादा पोस्टकार्ड अपने सैनिक बंधुओं को लिखे और राखी भेजी थी। क्या बात है भाई, सलाम करते हैं आपकी इस बात को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहली बार जब पत्नी का खत मेरे कॉलेज के पते पर आया, दरअसल शादी के कुछ महीने बाद पत्नी की विदाई हो गई, वे मायके चली गई थी, मैं कॉलेज में पढ़ने में व्यस्त हो गया। अचानक एक दोस्त ने एक खत एक दिन दिया, तुम्हारा खत मेल काउंटर पर रखा है, ले आता हूँ। खत को ले जाकर लाइब्रेरी में कोने में बैठ कर पढ़ने लगा, तमाम शायरी दोहे पढ़ते ही मन ही बदल गया, उनकी याद ने माहौल ही बदल दिया। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं इन्होंने। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय बहुत ही बढ़िया लगा, सुरीला सफ़र का आज, खतों की बात, मुझे तो गाने भी बहुत सारे याद आ रहे हैं और गानों की फेहरिस्त इन्होंने लिखी है। अब चलिए अगला गीत सुनते हैं, बूझिए ज़रा फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम भी बूझना है आपको।

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और संगीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी दुल्हन और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सिर्फ नियुक्ति पत्र ही संभाल के मैंने रखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है निदा फाजली का शेर, सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र बहुत बढ़िया लग रहा है। खतों की बात है, मुझे बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं और गानों की लिस्ट इन्होंने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का प्रोग्राम ख़ास है क्योंकि बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि हम मेरे घर आ रहे चिट्ठी डाकिया डाक लाया, एक डाक और डाकिया एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों को देखकर चेहरे पर चमक आ जाती थी। और मेरे घर आ रही चिट्ठी आए या ना आए, लेकिन हमें इंतज़ार रहता था। डाक वाले का पूरा शहर सम्मान करता था। अब वो ज़माना गुजरे ज़माने में सालों में तब्दील हो गया। दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड, शादी के निमंत्रण, कुशलता का समाचार, कोई अन्य खबर, नौकरी से संबंधित सूचनाओं के पत्र भी, और भी बातें, बहुत कुछ यादें ताज़ा हो गई जब लोग चिट्ठी लिखने को कहते और आई चिट्ठी को पढ़कर सुनाया करते थे। तो ऐसी तमाम चिट्ठियां होती थी जब, और ये भी आपको याद होगा कि अड़ोस पड़ोस की महिलाएं, जब जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जिन्हें पत्र पढ़ने नहीं आता था, वो पत्र लेकर आती थी घर में और कहती थी कि ज़रा ये पत्र पढ़कर सुना दो। और उसमें कई बार मजाक भी होता था, बच्चे शरारत भी करते थे, चिट्ठी लेकर भागते थे इधर उधर, वो दादी काकी दौड़ती थी पीछे पीछे, वो भी एक अलग आनंद था। एक श्रोता ने लिखा है कि क्या वो खूबसूरत दौर था जब किसी अपने के नाम चिट्ठी लिखना अपने ही मन के आंगन में उतरने जैसा हुआ करता था। कलम की नोक से कागज़ पर उतरते शब्दों में न जाने कितनी भावनाएं घुल जाया करती थीं। शब्द केवल पढ़े नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे। आज तो डिजिटल युग में उंगलियों के एक स्पर्श से संदेश पहुँच जाते हैं, पलक झपकते ही जवाब आ जाते हैं, लेकिन वो चिट्ठी वाली स्पर्श कहाँ मिलती है। चलिए अब सुनिए ये गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम और गीतकार और संगीतकार।

0: हिना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था नक्श लालपुरी और संगीतकार रविंद्र जैन, और आज उनकी याद का दिन है रविंद्र जैन साहब का। तो आज का ये प्रोग्राम का आखिरी गाना उन्हीं के नाम था। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है और अभी भी टिप्पणियां आ ही रही हैं श्रोताओं की, पढ़े देते हैं, थोड़ा सा वक्त है। चिट्ठी लाने वाले डाकियों को हर बड़े त्यौहार जैसे होली दिवाली पर विशेष उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने आकाशवाणी जलगांव से प्राप्त ग्रीटिंग कार्ड कुछ दोस्तों के पत्र संभाल कर रखे हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने कुछ पुराने खत अभी रखे हैं संभाल कर, मेरे जेब में पड़ा मोबाइल बहुत जलता है इस बात से। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चिट्ठियों का इंतजार रहता था, अब जमाना बदल गया है, विश्व डाक सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक श्रोता ने लिखा है, गाने की लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु से होती थी शुरुआत पत्र की, और चिट्ठी महज कागज का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हृदय की धड़कनों और आपसी प्रेम का लिखित जीवंत दस्तावेज हुआ करता था, जो प्रेम प्रतीक्षा धीरे के रंगों से जुगलबंदी करता हुआ एक भावुक और दिल से दिल को जोड़े रखने के एहसास लिए होता था।
1: श्रोताओं, यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और 2:15 पर आकाश

0: Assembly seats and one Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies U.S. suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में IIT जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे, जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR News Hindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़

0: फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
2: 550 मिलियन यूजर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा। इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द स्टैंडर्ड
0: सेटिंग टेबल। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
3: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूचित HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में

0: की जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
1: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H-1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्र, कर्नाटक और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इसमें कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा

0: सीटों और एक लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का यह हफलंग केंद्र है। आई पुनः आनंद लेते हैं मुंबई केंद्र से रिले किए गए वेद भारती के कार्यक्रम की।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। फिल्म थी वो कौन थी और संगीतकार थे मदन मोहन।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ

0: जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे थे फागुन फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कमर जलालाबादी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
5: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
4: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नागिन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रेम धवन का लिखा गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में। फिल्म थी सावन।
1: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।
3: तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
1: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10

0: बजरी से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी दोस्त मंजरी वर्मा का कीजिए नमस्कार स्वीकार। हम सभी के जीवन में बचपन की प्यारी यादें जैसे दादी बाबा माता पिता के साथ बिताया वक्त यादों में जुड़ा होता है, और दादी बाबा से सुनी कहानियाँ या सीख, वही माँ के हाथ का बना खास व्यंजन जो आज तक आपको याद है, आपकी माँ को क्या पसंद है और पिताजी को क्या पसंद है, उस दौर के गलियारों में चलते हैं जहाँ अपनों की यादें आज भी दिल में बसी हैं, जिसे याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है या नम आँखें हो जाती हैं। अब फोन की घंटी बज उठी है, लेते हैं पहली कॉल और देखते हैं किस सखी से होंगी बातें। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद सातुई से बोल रही है रेखा मुखर्जी।
0: रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में, और बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी पहली कॉल लगी है। तो बताइए आप कैसी हैं?
1: हम ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए कि बचपन की जो यादें होती हैं प्यारी प्यारी से, दादी बाबा के संग माता पिता के संग, वो गुजरा हुआ जो दौर होता है, तो उसकी कुछ यादें आप ताजा कीजिए
1: हाँ,
0: हमारे।
1: याद आती तो है, लेकिन सब तो गुजर गया।
0: जी
1: दादा दादी मामी पापा सास ससुर जी सब गुजर गया।
0: तो ये बताइए कि आपको अपनी मम्मी के हाथों का बना हुआ कुछ खाना याद है? वो क्या अच्छा बनाती थी?
1: हाँ, जैसे पीछा का टाइम पीछा बनाता था,
0: जी
1: सब्जी बनाता था,
0: जी
1: ये सब भी माँ का याद आता है।
0: आप बनाती भी होंगी फिर उनका सिखाया
1: हाँ
0: हुआ।
1: हाँ माँ माँ का पास, मेरा सासू माँ का पास, हम बहुत तरीका तरीका खाना बनाने सीखे, और
0: अच्छा,
1: हमको नया नया खाना बनाने बहुत अच्छा लगती है। जितना अपने से खा के खुश नहीं मिलता है, हम
0: जी
1: दूसरे को खिला के हमको खुशी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जिनको खाना बनाने का शौक होता है तो वो मन से बनाती हैं और सामने वाले को भी बहुत अच्छे से दिल से खिलाती हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और कुछ अपने पापा के बारे में बता सकती हैं, कुछ यादें उनकी?
1: पापा हमको बहुत कुछ समझाता था,
0: जी
1: कोई चीज का काम तुम करोगी
0: जी
1: तो 10 बार तुमको सोचना होगा, और एक बार कोई काम तुम कर लेगी तो वह दोबारा नहीं घूमेगा।
0: सही बात है। और ये बताइए, हमारा विविध भारती जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ के प्रोग्राम आप कितने सारे सुनती हैं?
1: हाँ हाँ सुनते हैं जी, क्या बोलेंगे, 2 महीना हो जाता है तो मेरा पूरा मन छटपटाने लगती है। आज
0: जी
1: जो रात को जो विविध भारती का गाना होता है ना,
0: जी
1: वो
0: जी
1: भी हम सुनते हैं। शुक्रवार को जो गीत होता है वो भी सुनते हैं हम।
0: अच्छा, क्या बात है, यानी आप बहुत पुरानी श्रोता हैं विविध भारती की।
1: हाँ हाँ हाँ
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताइए आज आप फिर क्या सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम तेरी मेहरबानियाँ,
0: जी
1: और गाना वैसे ही भी है, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ। मेरे एक वो कुत्ता था,
0: जी
1: ये वही कुत्ता जब चल गया ना,
0: जी
1: एक हफ्ता हम लोग कुछ नहीं खाए,
0: हाँ,
1: और ये गाना मेरा दिल में बैठ गया।
0: ओ हो, सही बात
1: मेरा
0: है।
1: बच्ची भी अभी तक

0: ममता बाड़ी में रोती है, हमको बोलती है कि माँ जब आप विविध भारती में आप फोन लगाइएगा तो माँ ये गाना को भी जरूर दीजिएगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम किसी पशु को पालते हैं तो हमारा उनसे बहुत जुड़ाव हो जाता है, उसकी यादें तो दिल से कभी जा नहीं सकती हैं। तो हम आपको आपकी पसंद का ये गाना सुनवाते हैं रेखा जी, और फोन कॉल करने के लिए आपको हेलो सहेली में बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। नमस्ते
1: नमस्ते।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर इचलकरंजी से जयश्री पाटिल बोल रही हूँ।
0: जयश्री जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपनी जो बचपन की यादें होती हैं, जो आपने दादी बाबा के संग गुजारी हैं या मम्मी पापा के संग गुजारी हैं, उन यादों को हम चाहते हैं कि आप आज हमसे साझा करें।
1: दादी तो नहीं थे हमारे बचपन में, हमारी दादी गुजर गई, लेकिन
0: जी
1: बाबा के साथ एक याद है कि सुबह हमारे बाबा कभी हमें उठाते नहीं थे। सुबह 5:30 बजे आकाशवाणी सांगली केंद्र लगता था ना, तब
0: जी
1: वो

0: रेडियो ऑन करते तो हम सब जाग जाते थे,
1: अच्छा,
0: और तब से लेकर आज तक रेडियो इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती।
1: क्या बात है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं कि आप रेडियो कितने प्यार से सुनती हैं और कितने समय तक सुनती हैं, ये बहुत अच्छी सी बात आपने बताई। और आप अपनी पसंद के बारे में बताइए कुछ, या आप क्या कहना चाहती हैं?
0: मैं तो इतना कहूंगी कि आपका वो गीतों भरी कहानी है ना, वो मुझे बहुत भाती है।
1: जी, बहुत अच्छा लगा आपने
0: इतना अच्छा लगता है वो कि आप बीच बीच में जो बोल लेते हो ना, वो मेरे मन को इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मुझे आज इतना आनंद हुआ है कि पूरे 6 महीने हो गए मैं इतना लगातार कोशिश कर रही हूँ, आज जाके मेरा कॉल लगा है अभी।
1: देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉल लग गई और आपकी मेरे से बात भी हो रही है।
0: और आपके लिए मुझे एक कहना है कि जब भी ऑन करोगे रेडियो तब कुछ भी नया ही पाओगे, ऐसा विविध भारती का है। और संगीत जो रहता है ना,
1: जी
0: सबके दिलों की धड़कन विविध भारती, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। दिन भर रेडियो के सिवा मेरा कोई सखा नहीं रहता, इसलिए सखी भी वही है और सखा भी मेरा रेडियो है।
1: क्या बात
0: इसलिए
1: है
0: मैं दिल
1: जी,
0: से यही कहूंगी, जब तक सूरज चांद रहे ना तब तक विविध भारती रेडियो हमेशा बजता रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी प्यारी सी बात कही है। और बताइए, और क्या आपके शौक हैं या क्या आप करना पसंद करती हैं?
0: मैं तो गेहूं और नाचनी का बिस्किट बना के देती हूँ, घर में छोटा सा उद्योग खोल रखा है मैंने।
1: क्या बात है, मतलब घर के लिए बनाती हैं या आप बिजनेस भी करती हैं इसका कुछ?
0: बिजनेस भी करती हूँ मैं, दूसरों को बना के देती हूँ।
1: हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं दिल से आपके लिए कि आपका जो व्यवसाय है ये बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े।
0: दिल
1: जी,
0: खोल के आपके लिए धन्यवाद।
1: लेकिन ये बताइए कि आज आप हेलो सैली में कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
0: 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
1: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम 16 साल में पहुंच गए, है
0: पहुंच
1: ना?
0: गए।
1: जी तो चलिए जयश्री जी, आपको आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं सोनिका बात कर रही हूँ मैडम, हिसार हरियाणा से।
0: सोनिका जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आपका शहर कैसा है, वहाँ की क्या खास बात है?
1: जी, शहर मेरा बहुत अच्छा है मैडम, साफ सफाई बिल्कुल रहती है वहाँ पे।
0: जी
1: वैसे मैं गांव से हूँ।
0: अच्छा,
1: वैसे जिला तो मतलब मेरा हिसार है, गांव में रहते हैं मैडम। वैसे हम
0: गांव तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े हरे भरे खेत होते हैं, है ना?
1: जी मैडम,
0: तो आपके यहाँ क्या होता है काम?
1: हमारे यहाँ पे मैडम फसल में धान वगैरह होते हैं और मैडम नरमा की कपास होती है, गेहूं
0: अच्छा,
1: भी होती है मैडम।
0: जी दाल गेहूं वगैरह होता है।
1: जी मैडम,
0: और सोनिका जी, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके दादी बाबा या मम्मी पापा की यादों को ताजा करने वाले हैं। आपने जो वक्त गुजारा है उन लोगों के साथ में, तो कुछ उनकी यादें, किस्से, कहानियाँ, कुछ सीख, वो अगर आपको याद है तो आप हमें बताइए।
1: जी दादा दादी तो मैडम मैंने देखे नहीं,
0: जी
1: ये पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। पापा
0: जी
1: भी एक्सपायर हो चुके और मम्मी है भी फिलहाल। तो खाना
0: तो मम्मी से आपने क्या क्या चीजें सीखी?
1: बनाने में जो डिश होती है मैडम वो
0: जी
1: सीखी मैडम, जैसे आलू के परांठे हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम, उसी से मैंने सीखा मैडम। मतलब मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम आलू के परांठे।
0: ये क्या बात है। और सोनिका जी, ये बताइए कि आपको भी कुछ कढ़ाई, कशीदाकारी का शौक वगैरह रखती हैं क्या आप?
1: नहीं मैडम, मैं ये नहीं करती। जैसे मैं ग्रुप में काम करती हूँ मैडम, हरियाणा में जैसे एक स्कीम है NRLM की तरफ से, तो उसमें जैसे 10 लेडीज होती है, 10 लेडीज इकट्ठा करके उनका समूह बनाते हैं हम,
0: जी
1: और उस समूह में जैसे लेडीज को बचत करना सिखाते हैं। जैसे हर महीने वो 100 रुपए जमा करे या 200 रुपए जमा करे,
0: जी
1: उनका एक अकाउंट खुलवा देते हैं मैडम किसी नाम के, तो उसका अकाउंट बैंक में खुलवा देते हैं। और बैंक से अगर लेडीजों को जरूरत होती है पैसों की तो उनका मतलब लोन वगैरह भी करवा देते हैं मैडम। मैं
0: क्या
1: ये
0: बात
1: काम करती हूँ मैडम,
0: जी
1: कढ़ाई बुनाई का नहीं करती।
0: जी बस सोनिका जी, जो आप काम करती हैं वो तो बहुत अच्छा है कि आप महिलाओं की मदद करती हैं, इस तरह से बचत भी करवाती हैं, खाते भी खुलवाती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती हैं।
1: मैडम हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी यूपी में अमेठी जिले में।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमारे विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैं मैडम सुबह से सुनती हूँ सखी सहेली और हेलो सहेली, तो मैडम फोन कार्यक्रम तो सुनती हूँ, और जैसे 1 बजे वो कमेंट वाला फेसबुक वाला आता है ना,
0: जी जी जी
1: वो भी कार्यक्रम मैडम सुनती हूँ
0: क्या
1: और उसमें
0: बात,
1: कमेंट भी करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट भी करती है। और सोनिका जी,
1: जी मैडम,
0: आपको
1: जी
0: कुछ गाने वाने का भी शौक है क्या?
1: गीत मैं सुनती रहती हूँ मैडम, ज्यादातर ओल्ड गीत ही पसंद है मैडम।
0: तो आज जो आप मुझे गाना बताएंगी कि हेलो सहेली में आप ये गाना सुनना चाहती हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए तो मजा आ जाएगा।
1: एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी, ये यही गीत सुना दीजिए।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना सोनिका जी।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हाँ मैम, मैं मरका खंडा से जिला गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: जी, आपका क्या नाम है?
1: वो मिंद्रा नोनार है।
0: तो उमिंद्रा जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए अपने बारे में कुछ मन की बातें।
1: हाँ मैम, हम ग्राम सालेकसा तहसील में रहते हैं।
0: जी
1: सालेकसा से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव है
0: जी
1: और
0: और
1: हम खेती किसानी का काम करते हैं मैम।
0: अच्छा, खेती किसानी में आपने खेत में क्या बोया है इस समय?
1: हमने खेत में धान बोया है मैम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा है। तो यानी कि फिर आप उसको अपने लिए रख लेती होंगी कुछ, और कुछ भाग आप उसको बाजार में निकाल देती होंगी, बेच देती होंगी, है ना?
1: हाँ मैम, कुछ यानी आधी फसल बेचने के लिए रहती है और आधी फसल खाने के लिए घर में।
0: अच्छा, और बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में सास है, 2 बेटे हैं और हम पति पत्नी 2 जन हैं।
0: क्या बात है, यानी कि भरा पूरा परिवार है। और आज हम बात करने वाले थे कि अपने माता पिता की और दादी बाबा की, या आपकी सास ससुर हैं जो परिवार में, उनकी कुछ यादें जो आप बताना चाहेंगी, क्या आपने उनसे सीखा?
1: हाँ मैम, सीखा तो बहुत कुछ है, काम वाम सीखा है, कुछ खेती किसान का काम सीखे है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बड़ा सिखाता है और हम उस काम को अच्छे से सीख जाते हैं और करने लग जाते हैं, है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो आप अपने बच्चों को किस तरह से काम सिखाती हैं?
1: हाँ मैम, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं,
0: अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे?
1: एक फाइनल ईयर में है, एक फर्स्ट ईयर में है।
0: अच्छा, तो बताइए आप विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैम मेरे को हेलो फरमाइश सबसे अच्छा लगता है और हेलो सहेली, सखी सहेली,
0: जी, क्या बात है।
1: मनचाही गीत
0: अच्छा,
1: और
0: तो
1: सबसे फेवरेट प्रोग्राम हेलो सहेली और हेलो फरमाइश।
0: क्या बात है, यानी कि आज आपके फेवरेट प्रोग्राम में आपकी कॉल लग गई है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो बताइए आज आप क्या गाना सुनना चाहती हैं?
1: मुकद्दर का सिकद्दर का, वो साथी रहते रहे बिना बिछे जीना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं प्रिया बोल रही हूँ, दिल्ली से।
0: प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। तो बताइए अपने बारे में कुछ हमें।
1: बस अपनी ऐसे ही प्राइवेट जॉब है, कपड़ों
0: अच्छा, तो किस तरह की आप जॉब करती हैं?
1: की दुकान है, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना।
0: जी जी
1: तो
0: जी यानी कि आप शॉप पे काम करती हैं, तो बहुत अच्छी
1: हाँ जी,
0: बात
1: हाँ जी, हाँ जी। विविध भारती के
0: जी।
1: सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं
0: एक
1: मुझे,
0: मिनट।
1: इतना पसंद है। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं रेडियो भी लेके आई एक नया।
0: अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनना पसंद करती हैं?
1: मैं सखी सहेली और जो प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं तो सारे ही, लगभग रेडियो चलता ही रहता है।
0: क्या बात है। तो अपने बारे में और बताइए कि आपकी पढ़ाई आपने कितनी करी?
1: पढ़ाई तो मैंने बीए बीएड सब कुछ किया हुआ है
0: बीए और बीएड भी कर रखा है।
1: जी।
0: तो बीएड करने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि आप टीचर बनने के लिए आगे जाएं?
1: बहुत कोशिश की लेकिन जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे जा नहीं पाए।
0: कोई बात नहीं, आप जो काम कर रही हैं आप उससे खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात
1: जी बिल्कुल।
0: है ना? बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना अलका याग्निक का है, शायराना सी है जिंदगी।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं जयपुर से रहमाना बानो बोल रही हूँ।
0: रहमाना जी, आप जयपुर से बोल रही हैं, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपने बारे में, अपने शहर के बारे में बताइए, कैसा है आपका जयपुर शहर?
1: जयपुर बहुत अच्छा है मैडम, सब घूमने आते हैं यहाँ पे।
0: पिंक सिटी कहलाता है जयपुर।
1: हाँ तस्वीर बढ़िया है, आप भी आइए।
0: बिल्कुल, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा बस जयपुर घूमने आएंगे।
1: हाँ मैडम,
0: और बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं आप?
1: बस बच्चों को संभालना, घर का काम करना। हम 5 बहनें 1 भाई हैं।
0: जी, तो और आप क्या क्या करती हैं इसके अलावा? कुछ आप कढ़ाई वगैरह करती हूँ, कुछ ऐसा?
1: हाँ कढ़ाई भी करती हूँ, साड़ी भी करती हूँ, साड़ी पे सितारे लगाना,
0: जी
1: और कड़े जो होते हैं कड़ों पे सितारे लगाना, कड़े पहनते हैं ना
0: जी जी जी
1: चूड़ियों के साथ,
0: लाख
1: वो
0: के कड़े होते
1: लगाती
0: हैं
1: हूँ।
0: जो,
1: लाख के कड़े होते हैं जो, वो वाला काम करते हैं हम।
0: मुझे सुनकर के अच्छा लग रहा है कि रंग बिरंगे कड़े होते हैं और उनमें आप नग
1: हाँ
0: वगैरह लगाती हैं।
1: और मैडम फराकों में ना बटन भी लगाते हैं हम,
0: जी जी
1: कमीज होती है ना जो पहनने
0: जी जी
1: की, और क्या कहते हैं कुर्ते होते हैं उस पर बटन लगाती हूँ मैं, निशान लगा के। तो
0: क्या बात है, तो एक दिन में कितनी कमीजों में आप बटन लगा सकती हैं?
1: जैसे मैंने 1,000 फराकों में निशान लगाया तो मेरे
0: जी
1: 800 रुपये हो गए।
0: क्या बात है। और खाना वाना क्या बनाती हैं आप? अच्छा,
1: खाना गिरी मिस्टू बनाती हूँ,
0: मीठे में क्या बनाती हैं?
1: मीठे में खीर,
0: अच्छा, खीर, यानी किस चीज़ की खीर बनाती हैं आप?
1: कान की दूध की, और उसमें चावल डलते हैं मैडम।
0: अच्छा, चावल वाली खीर बनाती हैं, यानी कि
1: हाँ
0: तो उसमें मेवा वगैरह डाल के बड़ा स्वाद हो जाता होगा
1: हाँ
0: उसमें तो।
1: हाँ चाहे आप उसमें सवैया डाल लो।
0: हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा, मैं तो स्वाद आ गया यहाँ पर बैठे बैठे।
1: आप आइए खिलाएंगे आपको पका के।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए रहमाना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं, अपनी पसंद बताइए।
1: मैं क्रांति फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
0: क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो मैडम, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। मैं दुर्गा नाम है मेरा
0: दुर्गा जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये
1: जी। मैम,
0: बताइए कि और आप क्या करती हैं?
1: दोनों बच्चे जॉब करते हैं, हस्बैंड भी जॉब करते हैं।
0: जी
1: मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे रहती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा, और साथ में रेडियो भी सुनती जाती हैं।
1: हाँ, रेडियो चलते रहता मेरा, अभी बंद कर दिया मैंने।
0: अच्छा, यानी कि आप हमसे बात कर रही हैं इसलिए बंद किया है। अच्छा,
1: जी मैडम।
0: तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम जो आप सुनती हैं, उनमें से आपको कौन कौन से प्रोग्राम सबसे पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली आता वो सुनती हूँ मैं, और रोज सखी सहेली आता वो भी सुनती हूँ,
0: जी
1: मन चाहे गीत आता वो शनिवार रविवार वो भी सुनती हूँ।
0: जी जी बहुत अच्छा लगा।
1: अभी सुबह 6 बजे चालू करती है तो
0: जी
1: अपना काम भी हो जाता है, तो रेडियो भी सुनती हूँ।
0: दुर्गा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद का फिल्म का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
0: जी दुर्गा जी, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, और कॉल लगाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हाँ, मैं सिकंदरा से सुनीता उइके।
0: जी सुनीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं आप?
1: मैं ग्रहणी हूँ दीदी।
0: सुनीता जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। माता पिता के संग बिताई हुई, दादी बाबा के संग बिताई हुई, तो कुछ यादें हैं जो आप बता सकती हैं?
1: हाँ दीदी, बचपन में तो हम बहुत थे, ये सब करते थे। मतलब वो खेलते थे, वो जैसे डिब्बे वाला खेलते थे ना,
0: जी,
1: खो कबड्डी ये सब खेला करते थे।
0: जो सारे खेल होते हैं, लंगड़ी है या सिकड़ी है या रस्सी कूद है ना, इस टाइप के
1: हाँ,
0: खेल।
1: रस्सी कूद है, हाँ, छिपन छिपाई ये सब खेला करते थे। अभी भी मैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी खेला खेलती हूँ।
0: जी
1: छोटे हैं तो उनको कभी ज्यादा टीवी नहीं देखना, आप चुप जाओ, मैं आपको ढूंढती हूँ, ऐसा
0: बिल्कुल,
1: अभी
0: अपने बच्चों के साथ आप उनको अपने समय में जो आप खेल खेला करती थी, वो बच्चों को बताइए कि टीवी बंद करो, मोबाइल हटाओ और अब मेरे साथ आके तुम लोग ये खेलो खेल। तो उससे क्या
1: हाँ
0: होगा, एक आपस में जो संबंध बनता है प्यार का बच्चों के बीच में, वो बहुत अच्छा
1: हाँ
0: बनेगा।
1: दीदी,
0: और दोस्त जैसा अगर आप बन के रहेंगी, उनके साथ खेलेंगी, इंजॉय करेंगी, तो वो बच्चे भी बहुत खुश होंगे, है ना?
1: हाँ दीदी दीदी दीदी, मैं हम मेरे घर मोबाइल बहुत कम देखते हैं, बच्चे बहुत
0: जी
1: ज्यादा खेलते कूदते हैं।
0: सुनीता जी, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं, और उससे क्या होता है, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है।
1: हाँ जी, उनके साथ तो यार तो की मतलब कभी कभी बैट बॉल खेल लेती हूँ ऐसे। हाँ
0: बिल्कुल, आप थोड़ी देर क्या, आप तो एक नियम बना दो कि 1 घंटे हमारे साथ तुम लोग को खेलना है ना? तो आप भी एक्टिव रहेंगी और बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना? तो सुनीता जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे वाला गीत सुना था दीदी, चलो बुलाया आया है, माता ने बुलाया है।
0: जी सुनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं अहमदाबाद से जरीना बात कर रही हूँ।
0: जरीना जी, और बताइए आप कैसी हैं?
1: जी मैं अच्छी हूँ।
0: अहमदाबाद का मौसम कैसा है इस समय?
1: अहमदाबाद का मौसम तो अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है।
0: अच्छा, और अपने बारे में और कुछ बताइए।
1: मैं स्टोर चलाती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा।
0: अच्छा जरीना जी, तो इसमें क्या क्या चीजें आप बनवाती हैं?
1: बनवाती नहीं हूँ, होलसेल में लाती हूँ मुंबई से, और यहाँ पे मार्केटिंग करती हूँ। हमारा जो नवरात्र आने वाला है ना, उसका सीजन चल रहा है, उसमें मैं बैंगल्स है, फिर नेकलेस है, वो सब लोग हम लाते हैं और उसको बिक्री करते हैं, स्टोर में रखते हैं।
0: क्या बात है, यानी कि सीजन आते ही बिजनेस बहुत तरक्की करता है ना?
1: जी। आप मंजरी जी बात कर रही हो ना?
0: हाँ, मैं मंजरी वर्मा बोल रही हूँ
1: जी,
0: जी।
1: बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।
0: चलिए, धन्यवाद, अच्छा लगा। जरीना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: वो गीत नहीं है बल्कि वो भजन है, मैं अम्बे जगदम्बे, क्योंकि अभी नवरात्र आने वाला है ना,
0: जी जी जी जी
1: तो मैं वो गीत सुनना चाहूंगी।
0: जरीना जी, बिल्कुल, आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, और आपने कॉल किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं बबीता कुर्मी, जिला सागर।
0: बबीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, सागर के क्या हाल हैं?
1: बस मैम जी बढ़िया है। आप सुनाओ, आपके मुंबई की क्या हाल है मैम?
0: मुंबई बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बबीता जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: पढ़ाई करते हैं दीदी, और घर में रहते हैं तो माता पिता का हाथ बटाते हैं, जैसे खेती किसानी होती है हम लोगों को यहाँ
0: जी
1: पे।
0: जी
1: तो दीदी उसमें अभी हम लोगों के यहाँ पे वो करता है सोयाबीन और उड़दा बज जाते हैं यहाँ पे उड़द। कभी आओ तो दीदी, यहाँ की मूंगफली है बहुत फेमस अर्जिनी की।
0: क्या बात है। फिर देखिए, जब कभी मौका मिलेगा, ऐसा सौभाग्य होगा, तो जरूर आएंगे और जरूर खाएंगे वहाँ की मूंगफली। मूंगफली के साथ में जो नमक मिलता है, उसका स्वाद भी अलग होता है ना?
1: हाँ दीदी, और दीदी देसी मूंगफली की तो बात ही अलग है दीदी। हम लोगों को यहाँ पे वैसे तो दीदी बुंदेली भाषा जानती हो आप?
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए, बुंदेली में क्या कहना चाहती हैं आप?
1: तो बुंदेली में मतलब बोलती तो मूंगफली है, जो हम लोगों को वो रहती है यहाँ पे हर खेतों में लगती है दीदी।
0: जी,
1: यहाँ के दीदी जो बेर होते हैं अभी तो मतलब नहीं फरे हैं, यहाँ पे फरने वाले हैं बस।
0: बेर जो उबाल के खाते हैं, छोटे वाले बेर होते हैं ना, लाल लाल।
1: हाँ वो उबाल के, वो दीदी जब वो फरते हैं, जब वो पक जाते हैं उनको तुरंत खाते दीदी, इतना अच्छा लगते हैं वो बेर।
0: जी। और बबीता जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आप बुंदेली में कोई गीत गुनगुना सकती हैं?
1: जी दीदी, बुंदेली में एक छोटा सा गाना है दीदी, बेटी के ऊपर से। बिटिया
0: सुनाइए।
1: को अगर बच्चे होने तो बहू का सेना हो, नारी नर की खान कहावे, बिटिया घर को नाम चलावे, आज की बिटिया बहू काल की, परसों माँ बन जे हो। यहाँ पे दीदी ऐसी गाना गाई जाती है लोग जी।
0: नहीं, बहुत प्यारा सा गाना है बिटिया के बारे में, कि बिटिया की क्या अहमियत होती है परिवार में।
1: जी दीदी, दीदी सबसे पहले तो आपके लिए और विविध भारती की पूरी टीम के लिए आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, आपको भी हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो
1: जी
0: बबीता जी, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आज?
1: दीदी, सुहाग फिल्म का गाना सुनवा देना, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरो वाली।
0: बबीता जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। मुंबई का एसटीडी कोड है 022, वो नंबर है 4002466 2, यानी 4002462। दूसरा नंबर है 2867-0288, यानी 2867-0288। तो बस हेलो सहेली में लगाइए ये नंबर्स और कीजिए अपनी दोस्त से बातें। प्रोग्राम हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। आप सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, कभी ना कभी आपकी कॉल लग जाएगी। जिन सखियों की कॉल आज लग गई है उनसे निवेदन है कि 2 महीने तक कॉल नहीं लगाएं। आज हेलो सहेली कार्यक्रम में सहयोग संपादन रहा झरना सोलंकी का और तकनीकी इंजीनियर समृद्धि नायक, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए अब मंजरी वर्मा को अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना है।
2: तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
0: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी।
3: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी हाँ।
3: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा।
5: आकाशवाणी का यह हफलंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत

0: कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है, और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पार्टी द्वारा पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और स्वयं की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने तथा कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपद, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस समेत अन्य स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। उधर रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन के इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल, वित्त, सेमीकंडक्टर, उन्नत विनिर्माण और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H-1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का यह हफलंग केंद्र है। आइए पुनः आनंद लेते हैं मुंबई केंद्र से रिले किए गए विविध भारती के कार्यक्रम की।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था। सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं, क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है, तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में। दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है, जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी, मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं मां? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हाँ, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहां लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो।

चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी, चाची जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको, लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची। जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थीं, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी, बेटी कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा, हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना, हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला, वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना, यही चाहती हैं आप। क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में, सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता, दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली। आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं, वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ। पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, ऊबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना। इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है, इसमें बुराई क्या है, लड़की लड़के सब बराबर हैं आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर, पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी, पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार, गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थीं, टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

0: मन से बहुत बिंदास अल्हड़ दिव्या के चेहरे के पीछे एक संवेदनशील रचनाशील सृजनकर्मी भी छिपा है। शायद उसकी संवेदनशीलता, उसकी रचनात्मकता ही उसे बार बार टेलीविजन की दुनिया में जाने को उकसा रही थी। पहले मास मीडिया की पढ़ाई पूरी करनी है और कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो ताकि बाद में पीएचडी की जाए और फिर तैयारी से टेलीविजन की दुनिया में काम किया जाए। उसकी तमन्ना है कि वो खुद लिखे और खुद ही प्रोड्यूस करे, सिर्फ धारावाहिक ही नहीं बल्कि एनिमेशन फिल्म भी बनाने के सपने का अंकुर उसके मन में फूट गया था। दिव्या की आंखों में अनगिनत चमकीले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना घर वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है, जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सरपीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले,
1: उस लंबू से सट सट कर ताली दे देकर इतना खींचे क्यों निपोर रही थी तू, हैं?
0: विनोद भैया, दिव्या को जलती आंखों से लिलोड़ते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिलाकर रह गई।

घर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे। इस घर में ये वक्त लड़कियों के लिए बाहर से लौटने का नहीं है। छोटे भाई सोनू ने दरवाजा खोला और अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने में वो मशगूल हो गया। चाचा हाथ में रिमोट लिए टीवी के चैनल बदल रहे थे। टीवी बंद करते हुए उन्होंने दिव्या को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराध करके लौटी हो। कॉरिडोर पार करती हुई वो बेडरूम तक पहुंची भी नहीं थी कि चाचा की रौबदार आवाज ने कानों में चोट पहुंचाई। बेतरह थकी हुई दिव्या का मन कर रहा था कि चाचा की पुकार को अनसुना करके सीधे बिस्तर पर पड़ जाए, लेकिन चाचा की हैसियत इस घर में पापा से भी बढ़कर थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि चौल में इतनी लंबी जिंदगी बिताने के

आज जब से टावर में घर लेने का सपना पूरा हुआ तो घर की एक मुश्त रकम का इंतजाम चाचा ने किया था। लोन अमाउंट भी उनका ज्यादा था। घर खरीदने में पापा की पूंजी कम लगी थी, जबकि दिव्या तीन भाई बहन मिलाकर पांच लोग हैं और चाचा के परिवार में विनोद भैया, चाचा चाची, कुल मिलाकर तीन लोग। मतलब ये एक आदर्श संयुक्त परिवार था। दिव्या सिर झुकाकर अपराधी की तरह सामने सोफे पर बैठ गई। विनोद भैया की लगाई आग चाचा की जबान के जरिए घर में धधक रही थी। उनकी लाल आंखें शोले उगल रही थीं और उसमें वो जल रही थी। ऊपर से तो वो बुद्ध बनी थी, लेकिन उसके मन में विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ रहा था। दिव्या अपने आप से ही पूछ रही थी कि आखिर उसका दोष क्या है, जमाना कहां पहुंच गया है। स्त्रियां धरती के हर छोर पर पहुंच गई हैं, स्पेस तक में अपना परचम लहरा रही हैं। ये संकुचित सोच के चाचा लड़कों के साथ घूमने क्या चली गई, घर सिर पर उठाए हुए हैं। खुद तो चाची की सहेलियों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर रस ले लेकर बतियाते हैं, हाँ, लेकिन दिव्या इस घर की बेटी है और वो लड़कों के साथ घूमने गई तो गलत करार दिया गया और उसे चाचा से बेवजह मार भी खानी पड़ी। इस आदर्श परिवार में बड़े होकर भी बात बात में पिट जाना आम बात है और ये उनके संस्कार में शुमार है। विनोद भैया ने दिव्या और इरफान को लेकर अफसाना गढ़कर चाचा और पापा से कह सुनाया था, वो भी इस तरह जैसे दिव्या कई दोस्तों के साथ न गई हो बल्कि अकेली इरफान के साथ गई हो, जबकि इरफान भी अन्य लड़कों की तरह महज एक दोस्त था। मम्मी ने भी चाचा पापा के पंचम सुर में अपना मंद्र सप्तक का सुर मिला दिया था। दिव्या, ए दिव्या, लड़की हो, इरफान से मिलना जुलना कम करो, समझी कि नहीं। लड़की का चरित्र सफेद चादर की तरह होता है, एक छींटा भी दाग लगा देता है उसमें। तुम जानती हो हमारे यहां ये सब नहीं चलता है। उस दिन दिव्या का दिल दर्द से कराह रहा था, अनगिनत खरोंचे लगी थी। मानशेष घाट में देखे फूल मुरझा गए थे, बेचैन मन आंसुओं का झरना बन बहता रहा बहुत देर तक। कमरे का दरवाजा अंदर से उसने बंद कर लिया।

रोने के बाद मन हल्का हुआ तो दिव्या ने मोबाइल उठाया, फेसबुक पर मालशेज घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर तक चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही। इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी, जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन के मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निस्संग पाया, डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन वो चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैला नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था। बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है, उसे सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। रायमा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती। वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी। समझ में आई बात?

दिव्या, ओ दिव्या, हाय हाय स्वीट हार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूं मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, ड्रामा की रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओ अरे हाँ, अरे तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने? तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसी चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है, पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा, पूछ तो सही, कौन है? पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है? प्रणव सर। अनमनी सी दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? चल ना चल। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा के स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी? और एक रीडिंग बहुत जरूरी है, अपने आप से ही वो गुफ्तगू करती है। आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये, फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है? क्यों क्यों घबरा रही हूं मैं? आखिर अपनों से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है? आखिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या, साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना, समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तोड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर आंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी, लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? अब किसके साथ रहोगी हैं? वहां न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन राइमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था। आंटी, दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ राइमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी, आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना। मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगा मेरा? कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना? वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था, गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराए शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो उहापोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं, क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थीं।
हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदें चिपक गई थीं। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलेटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए गए विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलाइन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं और इसके साथ ही हमारी आज की पहली सभा यहीं पर संपन्न होती है। दूसरी सभा के साथ शाम के 6 बजे आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं मीना स्वागत करती हूँ आज की दूसरी सभा में। सभा को शुरू करने से पहले आइए आपको जानकारी दे देते हैं आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ ही समय में स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को आरंभ करते हुए सबसे पहले आपको सुनवाएंगे मार कार्यक्रम के अंतर्गत मार भक्ति गीत जो सांगलिन दारंगोन और उनके साथियों की आवाज में। शाम 6:25 पर जेमी कार्यक्रम के अंतर्गत जेमी भक्ति गीत आप सुन पाएंगे तमिलिये न्यूमे और उनके साथियों की आवाज में।

शाम 7 बजे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवाएंगे डिमासा कार्यक्रम के अंतर्गत डिमासा लोकगीत निपोला कैम्प्राय और उनके साथियों की आवाज में। शाम 7:20 पर कार्बी कार्यक्रम के तहत कार्बी भक्ति गीत आप सुन पाएंगे।

शाम 7:40 पर कुकी कार्यक्रम के अंतर्गत कुकी आधुनिक गीत आप सुन पाएंगे वेल्जिनम हेंगना और उनके साथियों की आवाज में।

रात 8 बजे आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। 8:30 पर आपको सुनवाएंगे एक ही फिल्म से कुछ गाने।

रात 9 बजे आप आनंद ले पाएंगे भूपेन हजारिका के गाए कुछ बेहतरीन बंगला गीतों के कार्यक्रम का। और श्रोताओं, आज की आखिरी पेशकश रहेगी रात 9:30 पर चित्रगीत कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थी आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।

आइए आरंभ करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मार कार्यक्रम के अंतर्गत मार भक्ति गीत जोसांगलिन दारगोन और उनके साथियों की आवाज़ में।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मार कार्यक्रम के अंतर्गत मार भक्ति गीत जोसानलिंग दारंगोन और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ ही समाप्त होता है मार कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

श्रोताओं, तमिल न्यूमे और उनके साथियों के गाए इसी भक्ति गीत के साथ ही जेमी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले की जाएंगी संध्यार आंचलिक बातोरी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आइए आरंभ करते हैं डिमासा कार्यक्रम, सुनते हैं डिमासा लोकगीत निपुला केम्प्रा की आवाज में।

사나이장 하바사 송라이낭.

비사오 하자에 바이다라.

ভবাইকে ভরা মাছ খেয়েছে।

감주 교로 희실라에 낭.

여 사랑의 바퀴 다시래 안웅라오 여 사랑이래 바슈지동

0: 还是看我弄半天。
1: श्रोताओं आप सुन रहे थे निपुला कैम्प्राय की गाये डिमासा लोकी। इसी के साथ ही समाप्त होता है डिमासा कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। आइए आरम्भ करते हैं कार्बी कार्यक्रम। सुनते हैं कार्बी भक्ति गीत शरण मलिकपी और उनके साथियों की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्बी कार्यक्रम के अंतर्गत शेरोन मिलिक्पी और उनके साथियों के गाए कार्बी भक्ति गीत। इसी के साथ ही समाप्त होता है कार्बी कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आइए आरंभ करते हैं कुकी कार्यक्रम, सुनते हैं कुकी आधुनिक गीत वेलजनम हेंगना और उनके साथियों की आवाज में।

0: श्रोता वेलजनम हेंगना और उनके साथी के गाए इसी आधुनिक गीत के साथ ही कुकी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही समाप्त होता है स्थानीय भाषाओं की कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफ्रॉम केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आइए अब आरंभ करते हैं फिल्मी गीतों के सफर को, और सबसे पहले सुनते हैं अतीफ असलम का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में। अगला गीत आइए सुनते हैं अमित त्रिवेदी, न्यूमैन पिंटो और निखिल डिसूजा की आवाज में।

अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। आइए अब कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं सूरज जगन और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आइए आपको सुनवाते हैं एक ही फिल्म से कुछ बेहतरीन गीत, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे तेरे नाम फिल्म का गाना। सबसे पहला गीत आइए सुनते हैं उदित नारायण, कमल, के शान और अलका याग्निक की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी के साथ ही एक ही फिल्म से गाने यहीं पर समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगी समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं

0: नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपथ क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति JD Vance की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: There are three parties that have got licenses.
4: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनी

0: यात्रियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
2: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
3: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
4: सेमीकंडक्टर जर्नी,
5: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूर संचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
4: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
2: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
6: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है।

0: जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. BJP wins assembly polls for Rajinagar and Nandigram constituencies in West Bengal. In Tamil Nadu, ruling TVK wins assembly by polls for Madurantakam and Dharapuram seats. All India NR Congress retains Thattan Chowri assembly constituency in Puducherry. BJP also bags Assam's Naugaon Lok Sabha seat. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi to remain closed till tomorrow due to security reasons. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stands cancelled at source stations. India stresses the steps announced by U.S. regarding permanent labour certification program do not advance shared ambitions of both countries. South African jurist of Indian origin Navnetham Navipillai wins Nobel Peace Prize for her contributions to promoting peace and international law. And in cricket, second T20 international between India and West Indies.
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से लिखे गए समाचार संध्या। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

आपके गीत। दोस्तों, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे, यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम, और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही बंगला गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं। और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

आइए आरंभ करते हैं चित्रगीत कार्यक्रम। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं चित्रगीत कार्यक्रम के तहत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का चित्र गीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं। कल सुबह पहली सभा के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष। इसी के साथ मुझे यानी मीना को दीजिए इजाजत। शुभरात्रि। जय हिंद।